كان خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما

إخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم

0: कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार। अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ये इसलिए कि तुमसे बुखल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जवानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुखल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे तो अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था।
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं, अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 आई 0242-460100।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8591
1: छो परेशान आहीं
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जीअं मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
1: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

ਜਿਹੋ ਬੇਟੋ

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान में गालियां थियूं, ईरान से मुआहदो करण के जोर डिनो पो, ईरान मुआहदो न कर तो तवानाई सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर छींदी। अमरीकी सदर ट्रंप पे एक यूटर्न वे आपने हुरमस से 20% टैक्स लगने वो फैसलो भी वापस वी छो। संदस चवण है ईरानी क्यादत की पॉलिसी ईरान के मुकम्मल तबाही के रस्ते से वी वही रही है। ईरानी बंदरगाहन ईरानी कार्गो जो मुकम्मल नाकबंदी लागू कंदी, तेहरान के पूरी ताकत से निशानो बणायू पाया।
2: ईरानी सरजमीन के इंच इंच जो दिफा कंदासी। ईरानी सदर मसूद पज़दोश्चान जो अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी से रद्द अमल। मसूद पज़दोश्चान जो चवण है तो ईरान के तकसीम करण जो कोशिशों कंदड़ बुधाइन त जंग में उन्हें हासिल किया है। ट्रंप बुधी छे तो अमेरिकी जारियत जो ताकत से जवाब दींदी, हर कीमत से वतन की हिफाजत कंदी।
1: अमेरिका जा चौथे डी पे ईरान से हमला जारी। हंगाम बुमबूर बंदरगाह अब्बास कशम कशम हरमजगान सेरक ए हाजी आबाद धमाकन से गूंजी उठा। अमेरिकी फौज चवण है तो विच ओभर में 20 का जंगी जहाजन समेत केतरा ही जंगी जहाज मिशन में हिस्सों वी रहा है। ईरान के बंदरगाह ए सामुंडी इलाकन ईंदड़ वेंदड़ जहाजन की बीहर नाकाबंदी कई वही है।
2: ईरान जा भी अमेरिकी अड्डन से हमला जारी। बहरीन ए कुवैत में हथियारों के जखीरन के निशानो बनाने की दावा। पासदारन इनकलाब जो चवण है तो कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस के निशानो बनाया वो। अर्दन के अर्ज़ अड्डे से अमेरिकी थाकन के ड्रोन्स जरिए निशानो बनाया वो।
1: बलोचिस्तान में खारजी इनकलाब ऑपरेशन शाबान जारी। वधीक दहशतगर्द मारजी विया। मारजी वालों अंग वधी 85। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन की गाड़ी के कामयाबी से निशानो बनाए वधीक बिन दहशतगर्दन के मारियो वियो। पाक फौज एफसी पुलिस जो गडियल ऑपरेशन दौरान हवाई ए जमीनी कार्रवाई जरिए खारजन के निशानो बनाया पे वे। ऑपरेशन शाबान बिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमू तौर 123 खारजी मारजी चुका।
2: फीफा वर्ल्ड के पेरिस सेमीफाइनल में स्पेन की टीम फ्रांस के शिकस्त दई फाइनल में पहुंची वही। स्पेन की टीम बुड़ी के मुकाबले में फ्रांस के बिन गोल्स से शिकस्त दिनी। स्पेन की टीम 16 साल बाद फाइनल में पहुंची है। मदान जो जशन।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
5: السلام علیکم ادا.
6: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
5: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا؟
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
5: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
6: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
8: 03013992836.
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान ने अमरीका विच में तकरार शिदत अख्तियार करे पयो। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरानी बिजली घरन के निशानो बणन वाली धमकी बाद अरब मुल्कन में हाई अलर्ट। ईरान जो हमलन की बंदिश ताई अपने हुरमस के न खोलण जो ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप चवाय तेहरान गालन के मेज से वापस न आयो। ईंदड़ हफ्ते ईरान में बिजली घरन के निशानो बणायो वेंदो। पाकिस्तान इनकलाब चवाय ईरान जो बरामद रोकी वयूं आहिनि। खिते की तमाई रसद मुतासिर थी सघे थी। मुआशी तोड़े असली दबाव जो मुनासिब जवाब डिनो वेंदो।

अमेरिकी फौज जे चौथे ॾींहं बि ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते लॻातार 7 कलाक बमबारी। सेनेट काम पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। ईरान फौज जो बि अमेरिका ते जवाबी वार। कुवैत बहरीन ऐं अर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारनि इनकलाफ़ चयो आहे त कुवैत बहरीन ऐं अर्दन में अमेरिकी अॾनि ते हमले अमेरिकी हमलनि बाद कया विया। ईरानी फौज अर्दन ते हमलनि जी वीडियो बि जारी करे छॾी।

0: खिपरो भरसा नारा केनाल में बुडी वयल औरत जो लाश हथ गोठ मारवी वटा नारा केनाल में पेर टिकरण सबब बुडी वयल जीवो बाई जो लाश बटीह कलाकन का पोए हथ आयो। वारसन जो चवण है त औरत जो लाश पंहिंजी मदद पाण तहत गोल्यो से सरकारी सतह ते कंहिं बि मदद न कई।
1: नाज़रीन फीफा वर्ल्ड कप जे पहिरें सेमीफाइनल में स्पेन जी टीम फ्रांस खे शिकस्त ॾेई फाइनल में पहुची पई। स्पेन जी टीम ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में फ्रांस खे ॿिनि गोल्स तां शिकस्त ॾिनी। स्पेन जी टीम 16 सालनि बाद फाइनल में पहुती आहे। इवेंट जो ॿियो सेमीफाइनल अर्जेंटीना इंग्लैंड जे में थींदो। भारतीय टीम फाइनल में स्पेन सां वाहिद वट कंदी।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320437202 0242460100।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018003।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
7: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर एफएम 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
8: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
9: 0301399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं अभी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम, आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी रहेगा पूरी पूरी

योगी जी वक्त हुआ जाता है 11:18 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट इल द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। इसके अलावा वो लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं बन जाते हैं, ये माना लाइफ में अच्छा बड़ा कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि अपने हर काम में कामयाब होते रहे, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा बखैर आगे ले जी आया ने, सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर, शाही हाउ एंड वेलकम इन टू जिंदगी।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम सब मिलके करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस पहले गाने के साथ ही हम चलेंगे आगे और आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0303 5592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

रात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो, गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, न तुम्हें आए शर्म न हमें आए मौत, मैं सेनू इस मिनट नेक्स्ट मिनट हम साइको, इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड.

0: आज बेटे इम्तिहान के ससुरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ू जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा, रैप मेरी जान मैं कराची के लिए जान दे रहा, ये लड़के लिखते मुझे दिख
1: जी। नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से?
2: आपसे पहले क्या चल, लाजकाना से बात कर रहा हूँ, आपका प्यारा सा शो सुन रहा हूँ, मुझे सॉन्ग सुनाओ सार का।
1: पहले
2: खबर आ प्यारा मारो आयो,
1: गा के सुनाए ना शो का सेगमेंट का रूल है।
2: खबर आसा प्यारा मारो,
1: किसका गाना है ये वैसे, इतना सा गाएंगे बस?
2: दीदा सर का सुनिए।
1: दीदार
2: दीबा सर,
1: दीबा शहर का सॉन्ग है। ओके मैं
2: मेरा दोस्त
1: सुनती हूँ। ओके
2: पापा आप दिल में इज्जत है, वास्तव खाली बुक की जो भी सुना है आप उनको सलाम, आप फैसले शो नहीं करती हो मेरी।
1: बेस्ट लुक का शो
2: नहीं चल रहा,
1: चलता ही नहीं है तो करूंगी कैसे, मतलब करूंगी ही नहीं तो चलेगा कैसे।
2: प्रोग्राम करो ना आपका, आपकी आवाज बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
1: चले इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, अपना बहुत सारा

0: कंपनियों जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायतें मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: क्या बता दूं,
1: बस गाना सुना दें अच्छा सा ताकि वो हम प्ले करते हैं।
0: जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, ऐसा खुदा की तुम मेरी हो।

0: थैंक यू सो
1: ओके जी, थैंक यू सही,
0: थैंक
1: अपना
0: यू.
1: बहुत सारा ख्याल रखें. और ये थे कॉलर, और गाना हम प्ले करेंगे. और ये रहा गाना, सुनेंगे आगे चलेंगे इसी के साथ.

0: आप सुन रहे थे
1: जारी कल बयान में वायद हमलों दौरान ईरान के दिफाई निजाम के निशानो बनाया गया। ईरानी फौज ब अमरीका से जवाबी वार कुवैत बहरीन उर्दन में अमरीकी अड़न के निशानो बनाया गया। ईरानी फौज उर्दन में अमरीकी अड़न के हमलों की वीडियो भी जारी कर छी। पाकिस्तान इनकलाब ईरान जो हर बरामदात रोकू व्यू तो खिते की तवानाई रसद मुतासर थी।

मुजफ्फरपुर के शहर मीरापुर में जो पीरवसेंट लिंक रोड से दुहारन जो पुलिस पे करते हमलों गोली लगन सब बेलकार परवेज राजपुर सख्त जख्मी गणती वाली हालत में नवाबशाह मुंतकिल वाकई बाद जवाबदार फरार पुलिस इलाके में जवाबदार की गोला शुरू कर छी।

0: पेंशन का रियायत या खैरात न पर मुलाजमन जो कानूनी हक है सिंध हाई कोर्ट टीएमसी जे रिटायर्ड सेनेटरी वर्कर्स के पेंशन ए रहतूं देण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच जो 6 हफ़्तनि में मुलाज़मन खे रहतूं अदा करण जो हुकुम। अदालत चयो त पेंशन जी अदायगी में देर सरकारी इदारनि जी नाकामी बराबरि आहे।
1: हैदराबाद बरसात यारमंदन नौजवान खे गोली हणी क़तल करे छॾियो, जतोई ॻोठ में अनवर खे गोली हणी क़तल कयो वियो, लाश इस्पताल मुंतकिल।
0: भोजपुर वेझो मुबैना पुलिस मुकाबले में जख़्मी थियल ट्रैक्टर ड्राइवर दम धणी हवाले करे छॾियो, वारसन जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। ॻोठ मोहम्मद हयात ओगाई वासी महर लाल शेख सखर जे इस्पताल में ज़ख़्मनि जी सट न सांधे दम धणी हवाले कयो। लाश बस स्टॉप ते रखी कश्मोर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। संदन चवण आहे त पुलिस गुज़िरियल राति पोरेत खे मोटरसाइकिल न बीहारण तां गोलियूं हणी

0: उबाड़ो वेझो सेड कैनाल के 80 फुटन जो घारो केतरा ही फसल या घर पानी हेठ सेड कैनाल के बगड़ा कोरी वारे हम तक घारो पो घारो पवन सबब भर पासे जो जरी जमीन में केतरा ही घर पानी हेठ अची पा रवासन चवड़ा तक घारे के केतरा ही कलाक गुजरी वन बावजूद आपाशी हमलो ना पहुतो
1: खिपरो भरसा नारा केनाल में बुडी वेल औरत जो लाश हथ गोठ मारवी वटा नारा केनाल में पेर तिरकन सबब बुडी वेल जीवी बाई जो लाश 32 कलाकन खां पोए हथ आयो वारसन जो चवण आहे त औरत जो लाश पंहिंजी मदद पाण तहत ॻोल्हियो सरकारी सतह ते कंहिं बि मदद न कई।
0: फीफा वर्ल्ड कप जे पहिरीं सेमीफाइनल में स्पेन जी टीम फ्रांस खे शिकस्त ॾेई फाइनल में पहुची वई। स्पेन जी टीम बुड़ीअ जे मुक़ाबले में फ्रांस खे ॿिनि गोल्स तां शिकस्त ॾिनी। स्पेन जी टीम 16 सालनि बाद फाइनल में पहुची सेमीफाइनल अर्जेंटीना इंग्लैंड में थींदो। फाते टीम फाइनल में स्पेन सां मुआहिदो वठ कंदी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मोहम्मद उमर गोरी 0319-15-5-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: काफी ज्यादा और मुसलसल बढ़ता जा रहा है आगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो जब से सनती इनकलाब आया है तो आपने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में और पावर जनरेशन में, इन तीनों चीजों में गैसेस का इस्तेमाल, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल और इस तरह से कोयले का इस्तेमाल, ये बुनियादी असबाब है इसमें। और फिर लैंड यूज चेंज होती है, जैसे जमीन की साख्त आप तब्दील करते हैं, आबादी बढ़ती जा रही है तो दरख्तों का कटाव, जंगलात का कटाव करके आप शहर बसा रहे हैं नए नए, और ये भी एक फैक्टर है। तो इस तरह से मुख्तलिफ अवामिल जो है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही मैंने जैसे कहा कि फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस और कोयले से बिजली बनाना, इन तीनों चीजों के ऊपर आपकी संतें चलना और इन तीनों चीजों पे आपकी ट्रांसपोर्ट का इनसार, ये सबसे ज्यादा एक तरह से वो होता है, इसका कंट्रीब्यूशन है या इसका अमल दखल है आबो हवा को या माहौलियात को खराब करने में। तो ये बुनियादी असबाब हैं क्लाइमेट चेंज को कहते हैं कि, यानी जो प्रिंसिपल पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने टेम्परेचर का आपको बताया कि इतना बढ़ चुका है कबल सनती इनकलाब के मुकाबले में, और आगे की प्रोजेक्शन ये है कि अगर आपने फॉसिल फ्यूल और इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं इनका तदारक अगर ना किया आपने, अल्टरनेट एनर्जी पे ना गए और इसकी कोई मिटिगेशन या एडाप्टेशन क्लाइमेट चेंज के लिए ना की, तो इस सदी के वस्त तक ये 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, जो कि आपको याद होगा कि पेरिस एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट मशहूर उस नाम से है 2015 में, तो उसमें यही बात तय की गई थी कि दुनिया में जितनी तवानाई पैदा करने के जराए हैं, ट्रांसपोर्ट है और इस तरह से आपकी इंडस्ट्री है, उसमें आप फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस और कोयले का इस्तेमाल कम से कम करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको फेज आउट करें, यानी इसको बिल्कुल अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं और इसको निकाल दें अपनी उसमें रोजाना की उसमें से, कामों में से, तो आप बढ़ते हुए दर्जा हरारत को रोक सकते हैं। तो अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे आपने नाम लिया कि बहुत शिद्दत के मौसम आपको उनका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुज़श्ता 30 सालों का अगर आप डेटा निकाल के देखें तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा में भी और दुनिया भर के डेटा में भी यही है कि इन पिछले 30-35 सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और उनकी सिवेरिटी भी बढ़ गई है, यानी वो ज्यादा तवातर से आने लगे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज्यादा शिद्दत से आने लगे हैं पिछले 25-30-35 सालों में। उसकी वजह यही दर्जा हरारत का बढ़ना है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से 7-10% ज्यादा मॉइस्चर इंडक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और जाहिर है कि जब ज्यादा मॉइस्चर इंडक्ट होता है तो वो ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा शिद्दत की बारिशें होती हैं। अभी आपने नोट किया होगा कि हमारे शहरों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी पिछले साल भी हुआ था, सवात के इलाके में उधर और इसी तरह से कागान नरान की तरफ, यानी कोई पूरे महीने की बारिश जो है ना कभी कभी 1-2 घंटे में हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड और दूसरे रिवराइन फ्लड और ये सारी चीजें होती हैं, और उससे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, ह्यूमन लाइव्स का लॉस होता है और इस तरह से बहुत नुकसान होते हैं। तो ये है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बेसिकली कि फ्लड आप ज्यादा तवातर से आने लगे हैं, खासकर फ्लैश फ्लड, और इसी तरह से कभी कभी जब जिस साल बारिशें बहुत कम होती हैं तो उस साल फिर ड्राउट किसी कैफियत हो जाती है, और हीट वेव्स का मुसलसल बढ़ना, यानी कभी शाज़ो नादर की आपने सुना होगा कि हीट वेव इतनी तवातर से या इतनी शिद्दत से पहले आया करती थी, अब ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा तवातर से आना शुरू हो गए हैं हीट वेव्स। अभी आपने देखा कि यूरोप में कितनी सीवियर हीट हुई, यानी हजारों लोग मर गए, लोग के यहाँ यूरोप में और एक्सट्रीम नॉर्थ में कभी घरों में पंखे इंस्टॉल करने का भी यानी लगाने का भी तसव्वुर नहीं होता था, वहाँ ऐसा मौसम होता था, लेकिन वहाँ भी टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर गए। तो ये सारी चीजें जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से मुमकिन हुआ है एक तरह से इनका।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम खास तौर पर बात करें पाकिस्तान की, तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली कंट्रीज में क्यों शामिल है, क्या वजह है इसकी?
0: देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसी पहले 10 ममालिक की, अगर आप पिछले, वही मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 2-3 दहाइयों का डाटा निकाल के देखें तो कभी पाकिस्तान पहले नंबर पर, कभी 5वें पर, कभी 7वें पर, मतलब ये कि पहले 10-15 मुझे एक फिगर याद आ रही है कि पिछले 30 सालों में या 20 सालों में या 30 सालों में पाकिस्तान मतलब पहले 15 नंबर पे ही फाल करता है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना है। देखिए, इसी तरह के इवेंट्स दूसरे ममालिक में भी आते हैं, अमेरिका में देखिए आप कितने बड़े बड़े हरिकेन आते हैं उनकी जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से, लेकिन उन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा है, उनकी तरह से वो उन चीजों को सहार जाते हैं। हमारे

0: एलोवेरा फैन,
1: White H ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मीरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको और मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का. और हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को इंटरटेन करेंगे और साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे रिसीव हो चुके हैं आप लोगों के, और मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ चलते हैं. तो हमें मैसेज किया है जी हैप्पी गर्ल ने. हैप्पी गर्ल लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम स्वीट आरजे जी. वालेकुम अस्सलाम हैप्पी गर्ल. और इसके अलावा इस्लाम कोट प्रताप भील ठेड़ी से एंड नहल चंद इस्लाम कोट बहुत दूर है थर पार कर, ये लिखा है मैसेज में. अच्छा, मैंने पूछा था क्या. और साथ साथ कमेंट्स की तरफ आते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स किए हैं बहुत सारे लोगों ने. इस्मा किशोर लिखते हैं कि हेलो हाय सिस, कैसे हैं आप. रात से मैं सखर में था और जब सखर में एंट्री की तो पता नहीं क्यों आपका ख्याल आया. अभी रास्ते में हूँ. वापसी के रास्ते में है या सखर में ही कहीं पे रास्ते में है. अच्छा, इसके अलावा अब्दुल कयूम शेख हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि पीस बी अपॉन यू फ्रॉम लारकाना. इसके अलावा नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं. नजीर खोसो का कमेंट आया है, कहते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्पररी, व्हाट अदर्स गिव्स यू व्हाट रिमेंस एंड व्हाट अदर्स टेक विल अवे गो, देयर इज ओनली वन गुड डीड. वेरी वेल सेड. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही है जी. वेलकम टू द शो, वेलकम टू यू एज वेल.

ओके जी, हैप्पी गर्ल का मैसेज आया है. हैप्पी गर्ल लिखती है कि आरजे बुआ सीमा आपको सलाम कह रही है. वालेकुम अस्सलाम सीमा बुआ को आपकी. अच्छा, इस गाने की एक लाइन बहुत खूबसूरत है और हमेशा मैं उस एक लाइन के लिए पूरा गाना प्ले करती हूँ. और हाँ, वही वाली जो आतिफ असलम ने गाई है, कमेंट आया है. हाँ जी, वही वाली लाइन. और अब आएंगी वो लाइंस.

0: और अच्छा बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजबानी दो ऐसे है जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं।
1: वेरी वेल सेड, वेरी नाइस। कहाँ से सीखी है इतनी अच्छी बातें? हाँ देखो कितनी बड़ी हो गई हो, बस मुझे सुनते सुनते बड़ी हो गई है सरदर्द, बचपन से सुन रही है मुझे।
0: हाँ
1: है ना। अच्छा और कुछ कहना है?
0: अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

ओके जी, फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और आपकी और मेरी चिटचैट होगी इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरी करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी होता है. लव सम पर थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह.

ओके जी, फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और आपकी और मेरी चिटचैट होगी इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी होता है. लव सम पीपल थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलूचिस्तान में खारजन खिलाफ जारी ऑपरेशन शहबान में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान में पाक फौज पुलिस FC जो गडियल ऑपरेशन शहबान जारी। सिक्योरिटी ज़रियन मौजूद फोर्सिस जी कार्रवाई में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शहबान में मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग 88 थी वयो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दन के थाकन के कामयाबी से निशानो बनायो। 5 जुलाई का बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका है।
2: ईरान ऐं अमरीका विच में तकरार शिदत अख़्तियार करे पियो। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी बिजली घरनि खे निशानो पाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बि हमलनि जी बंदिश ताईं अपना हुरमस खे न खुलण जो ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमरीकी सदर जे बयान खे रद्द कंदे चयो त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां डॼण वारा न आहियूं।

0: अमेरिकी फौज जी चौथे डी भी ईरान के मुख्तलिफ शहर से लगातार 7 कलाक बमबारी। तेहरान के बहरी नाकाबंदी भी बरकरार। सेनेट काम पारा जारी कल बयान में चया है हमलन दौरान ईरान के दिफाई निजाम के निशानो बनाया वो। ईरानी फौज जो भी अमेरिका से जवाबी वार कोवैत बहरीन अर्दन में अमेरिकी अड्डन के निशानो बनाया वो। ईरानी फौज अर्दन में अमेरिकी अड्डन से हमलो भी किया, वीडियो भी जारी कर छी। पासदार इनकलाब है ईरान जो भी बरामद रोक व्यू तो खिते की तवानाई रस्त मुतासिर थी सके थी।
1: वे वजीर मोहम्मद अली शाह से पेगान अमन कमेटी की मुलाकात। वे वजीर मोहम्मद अली शाह अमन बर्दाश्त ए कानून की बालादस्ती जरिए इस्तकाम आने सकजे तो। अलामा ताहिर अशरीफी सिंध के मजहबी हम आहंगे समूरे मुल्क लाए मिसाल है। वतन की सलामती इस्तकाम से को भी ठाह न कह वो। दुनिया के सामूँ खारजी ए भारतीय फितना बेनकाब थी चुको है। मुल्क सलामती इस्तकाम से को भी ठाह न कह वो।
0: वजीर आजम शहबाज शरीफ से एनडीएमए चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वजीर आजम के चौमासे के वसकार दौरान सूबन से राबता बेहतर बनाने की हिदायत। एनडीएमए चेयरमैन वजीर आजम के मूनसून बरसात दौरान तैयारियों बाबत ब्रीफिंग दिनी। अगवाट इतला वारो निजाम फाल बनाने बाबत भी आगाही दिनी वही।
1: कराची में फुरमज अहमद से कत्ल कल डॉक्टर आकाश वाले केस में हिम अकबर आई टे जवाबदार गिरफ्तार। गिरफ्तार जवाबदार में एक उस्ताद भी शामिल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे डीआईजी साउथ सेफ सिटी कैमराओं की मदद से जवाबदार तक पौता आयो। डोह लाए बिन मोटरसाइकिल जे कार के इस्तेमाल किया वो। टिन जवाबदार गिरफ्तार किया है। रयल जवाबदार के भी जल्द गिरफ्तार किया वो। डोह लाए इस्तेमाल थियल हथियार क्या फुर थियल रकम भी मिली है।
0: नौशेरो फेरोज के शहर मेहरापुर वेझो पीर वसण लिंक रोड से डुआरन जो पुलिस पिकेट से हमलो। गोली लगन सबब एहलकार परवेज राजपर सख्त जख्मी। गणती वारी हालत में नवाब शाह मुंतकिल। वाके बाद जवाबदार फरार। पुलिस इलाके में जवाबदार की गोला शुरू कर छी।
1: पेंशन का रियायत या खैरात न पर मुलाजमन जो कानूनी हक है। सिंध हाई कोर्ट टीएमसी के रिटायर्ड सेनेटरी वर्कर्स के पेंशन राहत देने का हुक्म दे छो। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच जो 6 हफ्तों में मुलाजमन की राहत अदा करने का हुक्म। अदालत चयो तो पेंशन की अदायगी में देर सरकारी इमदार की नाकामी बराबर है।
0: हैदराबाद भरसा हथियारबंद नौजवान के गोलियों हणी कतल कर छो। जतोई गोठ में अनवर के गोलियों हणी कतल कयो वयो। लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: भोजपुर वेझो मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी थियल ट्रैक्टर ड्राइवर दम दई छो। वारसन जो लाश रखी धरणो। जिम्मेवार एहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। गोठ मोहम्मद हयात ओगाई वासी मेहरुल्ला शेख सखर जो अस्पताल में जख्मी असूर न सहंदे दम डनो। गोठाने के वारसन लाश बस स्टॉप से रखी कश्मूर पुलिस खिलाफ एहजाज किया। सदन चवण है पुलिस गुजरियल रात पोरत के मोटरसाइकिल न बीहारण तक गोलियों हणी मर्डिंग किया हो। जिम्मेवार एहलकार खिलाफ कार्रवाई कई वे।
0: बीए टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवार जहां मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। दादू में जेएसटी टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर न मिलने खिलाफ एहतजाज कयो। लाड़काने में आई बीए टेस्ट पास जे एसटी उम्मीदवार जो मुजाहरो। नौशेरो फेरोज में उम्मीदवार प्रेस क्लब अगैं एहतजाज कयो। मेरिट से नौकरियों देने जो मुतालबो।

0: सिंध में पानीकोट गुलाबा बादगार सरापा एहतजाज नदो मीरपुर बठोरे में धरना नदो जिकारो अलीबार में पानी जकोट गुलाबा बादगारन को करताल कई मीरपुर बठोरो में आबादगारन पानीकोट गुलाब झोक शरीफ रोड ते चोर वार रेगुलर वट धरणो हयो आबादगारन चयो तो पानी न होण सबब जरी जमीन बंजर बणजी वियो आहिनि।
1: उबावड़ो वेझो सेहर केनाल के 80 फुटन जो घारो केतरा ही फसल ए घर पानी हेठ सेहर केनाल के बगड़ा कोरी वारे हंद ता घारो पयो घारो पवण सब भर पासे जो जरई जमीनू ए केतरा ही घर पानी हेठ अची वया रहवासिन जो चवण है त घारे के केतरा ही कलाक गुजरी वजन बावजूद आपाशी अमलो नाहे पोतो।
0: केपरो भरसा नारा केनाल में बुरी वेल और जो लाश है तो घोट मारवी वटा नारा केनाल में पेर तिरकण सब बुरी वेल जेवो बाई जो लाश 32 कलाकन का पोए हथ आयो वारसन चवण है तो और जो लाश पंज मदद पान ते तो गोलियो है सरकारी सतह ते का भी मदद ना है कई वही।
1: फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन की टीम फ्रांस के शिकस्त दई फाइनल में पहुंची वही स्पेन की टीम बुड़ी के मुकाबले में फ्रांस के बिन गोल्स तां शिकस्त दिनी स्पेन की टीम 16 साल बाद फाइनल में पहुंची है। इवेंट जो बो सेमीफाइनल अर्जेंटीना में थी फाते टीम फाइनल में स्पेन से मुहादो अटकाईंदी।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का नया
3: लाइफ। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमार्ट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब।
1: तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात उनको मुझे तरफा अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और प्रोग्राम में जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये भी बताते हैं जनाब, ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसका नाम है व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किस तरह आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो जानने को मिलती हैं। ओके जी, तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि प्रोग्राम में खूबसूरती की बातें होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखेंगे तो वो ख्याल जो है वो किस तरह आपके चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखेगा और आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता भी रहेगा। तो बिल्कुल जी, सब कुछ बताएंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को भी वेलकम करते हैं और साथ साथ जरा आप अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, आंत के फहालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपकुल मूड के साथ, सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और सुनाओ फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल जी, साथ साथ रहेंगे और बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे और उसके अलावा बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन भी एंजॉय करने वाले हैं और आप लोगों के साथ बातें करते करते आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते रहेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बोस आपके होंठों पे 440 वोल्ट की समाई लाने के लिए। बिल्कुल जी, तो आपके होंठों पर 440 वोल्ट की समाई लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगा से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत ही प्यारा सा कसीदा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर कसीदा आप एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी, आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते रहेंगे और शामिल प्रोग्राम होते रहेंगे और क्या तरीकेकार होंगे जिसे फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, बताएंगे जी बताएंगे। लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो तो बता दें पहले। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है तो वो जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखा जाए तो ये थोड़ा सा सवाल जो है ना वो मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, अगर ऐसा ऑप्शंस मिले, यानी कि ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में वाकई बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें मिल रहे होते हैं, तो वैसे ही अगर आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें आप लोगों के पास जो है ना, या आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि आपके पास आपका जो फोन है वो 100% चार्ज हो लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं हो, या फिर उसमें इंटरनेट हो लेकिन उसमें जो है ना 1% चार्ज हो, तो इस सूरत हाल में आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? इंटरनेट के बिना तो मोबाइल वैसे ही थोड़ा सा बेकार लग रहा होता है, लेकिन इंटरनेट हो और चार्जिंग ना हो तो ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बिल्कुल आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की जो है ना वो सिर्फ आप लोगों को छूट है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? आपका मोबाइल 100% चार्ज हो और उसके अंदर इंटरनेट ना हो, या फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे कि भाई इंटरनेट मिल जाए चाहे मोबाइल 1% ही क्यों ना हो उस 1% में भी हम देख लेंगे जो हमने देखना हो। तो मुझे दिल से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस टॉपिक को फॉलो करेंगे, और अगर शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पे। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए जल्दी से और पेज को जरा फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाए तो जल्दी से पोस्ट पर आप आ जाइए, पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तो जल्दी से और बताइए जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए या अभी तक नहीं? और देखिए तो जरा आज पोस्ट पर नई नई वीडियो लगाई हुई है जनाब, जो कि विटामिन सी व्हाइट एज का जो फेस वॉश है उसकी है, और कितना अच्छा जो है ना ये फेस वॉश है ये तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और देखा जाए तो हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश है, अगर आप साबुन लगाते हैं तो साबुन है, अगर आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो नाइट क्रीम है, अगर आप फेयरनेस क्रीम लगाते हैं तो फेयरनेस क्रीम है, अगर आप एक्ने की वजह से परेशान है तो आपके पास एक्नी फार्मूला भी है। उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही मजेदार और बहुत ही जो है ना वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके लिए व्हाइट एज वालों ने तैयार किए हैं। तो अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, खूबसूरती को वैल्यू देना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में जरा खूबसूरती से रहना चाहते हैं तो आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, और मजीद तफसीलन आपको बताते रहेंगे। लेकिन साथ साथ ऐसा है कि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करेंगे 03 1579 0595 15 79 9595, ही नंबर आज जितने तमाम आप तो करें पांचे करीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन उन्हें की तमाम अवेलेबल कराए से होता है, ठीक है? सो बिल्कुल सी अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरतियां बढ़ाते रहिए, और मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं। और जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आदिल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशाहीं जी खुशाहियां, और कहते हैं कि वो अकेला भी हो मालूम नहीं, ये तमाशा भी हो मालूम नहीं, उसने मुड़कर भी नहीं देखा मुझे और देखा भी हो मालूम नहीं, लोग तो प्यारे बहुत होते हैं कोई तुम सा भी हो मालूम नहीं। ओके, नजीर कुसुमी सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, खुश आमदीद। और जी आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर सिटी, वालेकुम अस्सलाम, हाय मासूमा कैसी हैं? मासूमा ठीक है, आप बताएं आप कैसे? नजीर भाई कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ आरजी है, जो दूसरों ने दिया वही है, और जो दूसरों के लिए है जाएंगे वही जाएगा, अपना सिर्फ एक ही नेक अमल साथ लेकर जाएंगे। चले मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात शेयर करी, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और आकाश अली हमारे साथ मौजूद, कहते हैं हाय आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, मैं आकाश अली पीर जादो फ्रॉम सिटी मोरो, आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी सारी फैमिली आपका शो बहुत शौक से सुनती है, थैंक यू आपकी सारी फैमिली को।
اور جناب خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتے ہیں اور یہاں پر منور عباس ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام, لاہور سے آپ ہمارا شو سن رہے جی, خوش آمدید. عامر کہتے ہیں معصومہ یہ پوئٹری چلو آپ کی دنیا چھوڑ دیتے ہیں. معصومہ سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں دور چلے جانے کے بعد, کچھ ہی کرتے ہیں سارے نہیں کرتے, اور ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو یاد دلانے کے چکر میں بس پیالہ ہی گر جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اور ان کے علاوہ گلریز علی چانڈیو ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام سے جو آپ کے ایسی ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کا شو سن رہا ہوں, بہت اچھا شو ہے. آج مجھے ماسٹر منظور کا گانا سنائے گا, کل میں نے لگایا تھا آپ کے لیے, شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن آج بھی لگا ہی لیں گے. واسا بھائی ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو. اخلاق بلوچ آ چکے, کہتے ہیں پھوکا چھوڑے نہیں, یہ تو میری عادت ہے برسوں پرانی. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں ویری نائس یور شو سدرا, کیا تعریف کریں, آواز اچھی ہے اور ساتھ ساتھ پروگرام گڈ ہے. اور سانگ ریکویسٹ ہے جی, میں کوشش کرتی ہوں آپ کی پسند کا گانا لگا لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ وائٹش پیوری پروڈکٹس کا کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں, یا پھر آپ ابھی تیاریوں میں ہیں کہ ہاں جی ہم لگانے والے ہیں. محمد زمان آ چکے, محمد زمان بھائی گڈ آفٹر نون. سجاد بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں. بلال علی کہتے ہیں السلام علیکم محترمہ, آج ماں بھی سویرا آئی ایم, آج تمام بھی سویرا پہنچی, آج تمام کی چونتا بھلی کری آیا. عمران علی عباسی ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام. راندن اسٹیشن کا تمام اساں کے بدھو پیو, سو مولا علی سلامت اینڈ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اوکے, سو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگوں کو اگر ایک آپشن سلیکٹ کرنا پڑے, اور آپشن یہ ہیں آپ کے پاس کہ اگر آپ کا فون جو ہے, یعنی کہ اگر آپ کے فون کی بیٹری 100% چارج ہو اور آپ کو انٹرنیٹ نہ ملے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو لیکن آپ کے فون کی بیٹری جو ہے نا وہ 1% چارج ہو, تو ان دونوں آپشن میں سے آپ نے کون سا آپشن چوز کرنا ہے؟ بس ایک ہی آپشن چوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جلدی سے مجھے بتائیے اور شاملی پروگرام ہوتے جائیے, اور آپ بتائیے کہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس مل رہے ہیں یا پھر نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور یہاں پر جی آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں, بالکل آپ سب لوگوں کو ویلکم ان, خوش آمدید. اور یہاں پر جو ہے نا ٹائم ہوا جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے اور سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں سر یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियो, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी एड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जीए मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 0301-380-8743।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ग्लोइंग हो जाती है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपके जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम साबित होने वाली है। ये आपकी जल्द को नरम मुलायम तरोताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का, तो आपके चेहरे की जो खुश्की है और दाग धब्बे हैं, बेरोनकी है, ये सारी चीजें कम हो जाती है, जबकि आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खास अज्जा जो कि आपकी जल्द की हिफाजत

बहुत ही बेहतरीन क्रीमी सा फेस वॉश है, इसे आप इस्तेमाल कीजिए। 100% जो है ये नेचुरल अजा से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं। तो व्हाइट एज का सोप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस वॉश भी लगा सकते हैं। बाकी अगर बात हो यहाँ पर व्हाइट एज लवली क्रीम की, तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आप फेयरनेस क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गर्मियों के सीजन में मेकअप नहीं लगा पाते हैं, आप लोगों की जॉब है, डेली बेसिस पर आपको कोई काम करना पड़ता है, आप कहीं जाते हैं लेकिन थोपड़ा थोड़ा खराब है, उसको ठीक भी तो करना है ना, तो उसके लिए व्हाइट एश लवली क्रीम आपके पास मौजूद है। आपको क्या करना होगा, बस आप व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ना ऐसे परचेज करेंगे। और व्हाइट एश लवली क्रीम जिसके अंदर 30 विटामिंस के कैप्सूल्स एड हैं जनाब, रेडिएंट अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है जो कि आपकी स्किन की हिफाजत करेगी, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली है सूरज के इन खतरनाक बिना असरा से जो आपकी स्किन को डल बना देते हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल मार ही देते हैं। तो आपने भी व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाकर चुटकियों में रेडी हो सकते हैं, मेकअप से भी छुटकारा मिल जाएगा। और ये फेयरनेस क्रीम है तो इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, घर का हर एक फर्द इसे इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सारे लोग ही लगाएंगे ताकि आप अपनी खूबसूरती में बढ़ता हुआ जो है ना निखार देख सके और आपको अंदाजा हो कि वाकई आपके पास भी अब अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो व्हाइट एश लवली क्रीम लगाइए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और साथ साथ डाल करते जाइए 03-15-799-0595 बुढ़ी 1359-5595।

जी बिल्कुल, तव्हां बि वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो इस्तेमालु कयो, सही आहे, कमायो था त थोरो पाण ते ख़र्च करण सिखो. अच्छा बिलाल कहते हैं कि कल मुझे सड़क से मोबाइल मिला है, जिसका भी है मेहरबानी करके उसकी हैंड फ्री और चार्जर मुझ तक पहुंचा दे. सही है भाई, सही है. और मोहम्मद जमान भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा देंगे. और हैं जी एस एन आर बाणी, वालेकुम अस्सलाम, असां भी अची वियासीं खैर सां, ओ सिदरा चाला, उम्मीद त खुश हूंदा, शाद हूंदो, आबाद हूंदो, याद हूंदो, नई विसरंदो. बिल्कुल जी, शाद आहियूं, आबाद आहियूं, ऐं तव्हां जूं दुआऊं खपनि. अब्दुल गफ़ार हमारे साथ हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार, शाहपुर चाकर तालुका शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से हमारे साथ हैं जी. बहुत शुक्रिया खुश आमदी. और साजिद हुसैन सुमरो हैं, शो नाइस है आपका, बहुत शुक्रिया जी. आप हमें सुन रहे हैं फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना, खुश आमदीद. आमिर कहते हैं टॉपिक 100% चार्ज लाजमी है. ओके जी, उदास लड़की आ चुकी है. वालेकुम अस्सलाम, सलामत कैसी हो प्यारी आरजे, वेलकम टू शो, खुश आमदीद जानू. लियाकत अली अब्बासी हमारे साथ, सलाम आरजे, बस मोबाइल फुल चार्ज हो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे. चले ये भी अच्छी बात है. अच्छा उनका अलावा मोहम्मद जमान कहते आंसर सिलेक्शन करेंगे हम बैटरी फुल कीपैड फोन जिसमें आपका शो सुन सके, नेट हम वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, वो भी अलाउ नहीं है ना, सिर्फ बस फोन चार्ज चाहिए या फिर आपको नेट चाहिए, बताएं जरा. तो चलें आपने वैसे चार्जिंग को सिलेक्ट किया है. और सजाद बलोच हमें सुन रहे कहते हैं बैटरी फुल चाहिए बाबा. रिहान अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. और सवेरा अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम. सवेरा को भी खुश आमदीद. और सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ हैं जी, वेलकम. दर्दे दिल हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम. स्वीटी कैसी हैं? और जी हमारे साथ हैं दर्दे दिल, कहती हैं कि अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता हैं तो यकीन जानिए आपका वजूद काबिले रश्क है. अल्लाह आप अल्लाह के खास बंदे. बहुत शुक्रिया जी, क्या बात है, इतनी अच्छी बात आपने शेयर कर दी. किशोर भाई कहते सलाम अदा, आज

ताज़ो लॻायो आऊं किथे आहियां ॾिसूं तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता कितना पुराना है। तव्हां लाडकाना में आयो तुक्का लगा लिया मेरे, देखे कितना सही है। अच्छा इखलाक भाई कहते आंसर 1% मोबाइल चार्ज कर लेंगे और क्या बिजली तो है ना। हाँ सही ओके जी, तोखा पैसा ना प्यारा कंदासी बाबा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पैसा प्यारा न कयो। वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो, वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट तुम्हें लगे तो ही प्रोडक्ट असानी खूबसूरती के मुताबिक है तो भजंदा वो वी अचो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो। साणो साण तुम नंबर से राबतो कंदा रहो जी तुम्हें करीबी जनरल स्टोर से ही तुम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वन अवेलेबल थी तरी तो तक वे में आसानी थी। सो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइंदा जैसे सब फा सोना थी वन।

जी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल कीजिए और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं बताइए, और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ये भी बताइए। अच्छा, अब्दुल रजा कहते हैं सवाल जवाब, मोबाइल भले कितनी भी पर्सन चार्ज हो जाए पर नेटवर्क न हूं दो तो कहीं भी कमर जो ना है। गाल तो तुम्हारा सही जो था, हाँ मैंने वही आते साथ ही बोला कि आज जो है वो वीडियो में आपको एक नया वीडियो मिल रहा होगा जो कि भाई व्हाइट एश के ना जो फेस वॉश है उसके ऊपर, और देख सकते हैं आपके कितने अच्छे तरीके से व्हाइट एश का विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना ये तैयार किया है, ताकि अगर आप भी इस्तेमाल करें तो ये जो इतनी खूबसूरत सी लड़की है ना इसकी तरह आप भी खूबसूरत हो जाए। और देखें जी किस तरह खूबसूरती आपको मिलती है जब आप भी विटामिन जी बिल्कुल विटामिन सी का ये व्हाइट एज का फेस वॉश लगाने वाले हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल सा फेस वॉश आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। तो आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, मिल रहा है तो परचेज कीजिए। अच्छा, दर्दे दिल लिखती हैं कि टॉपिक इंटरनेट हो मोबाइल को चार्जिंग पर लगा हुआ चलाती रहूंगी। यासीन खंडा में सुन रहे हैं, हेलो जी। इमरान अली अब्बासी हमारे साथ हैं, थैंक यू। अच्छा, चाचा खालिद कहते हैं कि गई हुई चीज कहाँ वापस मिलती है, आप कह रही हैं कि आपको खूबसूरती वापस मिल जाएगी व्हाइट एश लवली क्रीम लगाने से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, और ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस बात को कहने का ना एक ठोस सबूत है मेरे पास, वो ऐसे क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ना वो वाली खूबसूरती मिल जाती है जो हमारी कहीं खो चुकी होती है। अगर आपकी स्किन कहीं डल हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी आ चुके हैं, एक्नी निशानात आपके चेहरे पर छोड़ गए हैं, आपको लगता है कि ये तो भाई कभी जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये जा सकते हैं जब आप कोई अच्छा वाला कोई इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जैसे कि आप लोगों की खूबसूरती को उसकी जरूरत हो। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, और व्हाइट एश लवली क्रीम भी है जनाब जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में जो है ना वो बढ़ावा भी कर सकते हैं, अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस भी ला सकते हैं। तो व्हाइट एश लवली क्रीम और ये फेयरनेस क्रीम है, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है, तो दोनों क्रीमों में थोड़ा सा फर्क है। ओके जी, उनके अलावा मां तमां के डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब के बारे में ना ही बुधायो, हाने वेठे वेठे मुखे गाल याद अची वही।

लाख भाई बिल्कुल सही करे कि निगतनाज हिन क्रीम के लगाए करे पो पंहिंजे जानी के मनाए सघे थी बिल्कुल जी तव्हां अगरि वाइट एज प्योरी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त सोणा एतिरा थींदा काई रिजेक्शन तव्हांजे लाइ हूंदी न छो तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो अगरि तव्हां पंहिंजे चहिरे जे एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो त एक्नीज़ खे ख़तमु करण लाइ तव्हां वटि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूदु आहे हीअ ट्यूब भई तयारी हिन तरीक़े सां थियल आहे त तव्हांजा अगरि एक्नी आहिनि ऐं घणा पुराणा एक्नी आहिनि या कुझु अहिड़ा एक्नी हूंदा आहिनि जेके भई अगरि तव्हांजी टीनेजर हूंदा त तव्हांखे अची वेंदा आहिनि उनखां अलावा अगरि तव्हांजी उमिरि भले वधंदी बि वञे थी पोइ बि एक्नी तव्हांजो जान न छॾींदा त उन्हनि एक्नीज़ खे ख़तमु करण लाइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था हीअ फुल डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयारु थियल प्रोडक्ट आहिनि ऐं कोई बि हिन जे अंदरि केमिकल न आहे हीअ फुल आयुर्वेदिक फार्मूला यानी कि नेचुरल अज़ाइन जे अंदरि मौजूदु आहिनि ऐं जड़ियूं बूटियूं हिन सां जेकर जड़ी बूटियुनि खे मिलाए करे ई जेको ट्यूब तव्हांजे लाइ तयारु कयो आहे ऐं जॾहिं तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु कंदा त तव्हांजे चहिरे जा एक्नी हुजनि एक्नी जा निशान हुजनि एक्नी कहिड़ी बि तरह जो आहे या तव्हांजे चहिरे ते ब्लैक पॉट्स हुजनि ब्लैक हेड्स हुजनि वाइट हेड्स हुजनि या फिर तव्हांजे चहिरे ते एक्स्ट्रा ऑयल हुजे कुझु बि हुजे तव्हांजे चहिरे ते बिल्कुलु ख़तमु थींदो हीउ भई आज़मायल ट्यूब आहे मूंखे बि एक्नी जो इशू हूंदो आहे पर उन जे अलावा अगरि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजे चहिरे जो एक्नी दशा एक्नी जो निशान बि गायब थी वेंदो ऐं न सिर्फ़ एक्नी जा निशान बल्कि तव्हांजे चहिरे ते कोई कट जो निशान आहे कोई सड़न जो निशान आहे त हीउ निशान बि ख़तमु थी वेंदा त तव्हां लाज़मी लॻायो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाइण खां पोइ तव्हांजी स्किन बेदाग थी वेंदी गोरी थी वेंदी ऐं तव्हां सुहिणा सुहिणा थी वेंदा सो ही ट्यूब लॻाइण जे तरीक़ेकार बिल्कुलु ई आहे त तव्हां ॿ टाइम लॻाए सघो था तव्हां सुबुह जो बि लॻाईंदा ऐं तव्हां राति जो बि लॻाईंदा हीउ जेको ट्यूब आहे न एतिरो वीआईपी आहे तव्हां जॾहिं लॻाईंदा पंहिंजे फेस ते एॾो थधो थधो तव्हांखे फील थींदो आहे ऐं गर्मी जे मौसम में जेके माण्हू एक्नी जी वजह सां काफ़ी परेशान हूंदा आहिनि त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे हिकु दफ़ा लाज़मी लॻाए ॾिसजो ऐं तव्हांजा एक्नी भई हिकु चकर लॻाइण में थोरा ख़तम थी वेंदा जॾहिं तव्हां सुबुह शाम लॻाईंदा त पोइ तव्हांजा एक्नी ख़तम थींदा एक्नी जा निशान ख़तम थींदा सफ़ा ईअं पाड़ पटिजी वेंदा सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो तव्हांखे मज़ो अची वेंदो

किसी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए जरा कौन कौन हमारे साथ हैं। अच्छा, इमरान भाई कहते हैं कि बस मोबाइल मिल जाए तो अच्छा है, नेट हो या ना हो, हल भाई की तकेश ऐसा फर्क ही न तो पवे। गुलरेस अली सानो कहते हैं हमें आता नहीं है हर किसी के सामने झुकना, हम अहले फिक्र हैं, आदात दरबारी नहीं रखते। क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, क्लाक भाई कहते हैं जी तां भी वाई टी जो प्रोडक्ट लगाए सको था, हर कहीं जी लाए आए ने। और किशोर भाई कहते हैं द आंसर 100% बैटरी, इंटरनेट खां भी जरूरी, दिल से करीब वारो नेट आए, माना मोबाइल चार्ज हो जाए ये ना। आई चौथा मतलब जेको तेको जेको आ ना नारायण कागन वयो आ मुझे आसपास जेके मानू आन मतलब जेके दिस सब वनन पया घुमण असा हते गर्मी में मरी वया सी असा वरी छुट्टी जो जेको प्रॉब्लम आ ना वो भी आए थोड़ो छुट्टी न तो मिली सके सो असा वरी नेक्स्ट ईयर वेंदा सी इंशाल्लाह। ता घुमो फिरो, एंजॉय कयो बाबा असा जे।

निदड़ी कहती है कि टॉपिक जरूरी तो दोनों ही हैं, बट मेरा जवाब है बैटरी फुल होनी ज्यादा जरूरी है और मैं तो मोबाइल लो होने ही नहीं देती। अच्छा करती हैं आप, बहुत अच्छा करती हैं। हीरो शुएब हमारे साथ हैं। सलाम जी, कैसी हो? मैं न्यू लिसनर हूँ, खैरापुर से सुन रहा हूँ। आई एम हीरो शुएब। खुश आमदीद कहते हैं हीरो आपको।

0: जी बिल्कुल, वाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम तो लोगों की मोहब्बतें हैं जनाब कि आप हमारे शो को लाइक करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, शो को भी लाइक करते हैं और साथ साथ वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपके एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं मिल रहा तो मैं इरफान सियाल साहब आपके साथ मौजूद हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप कहां कहां से जाकर जो है वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा वो परचेज कर सकते हैं। तो महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद के थे ग्रेट होस्टिंग में मार्जी, गुड आफ्टरनून, ग्रेट प्रोडक्ट्स बिल्कुल जी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमारे दिल के बहुत करीब, हम पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए, सबको पता चलना चाहिए मार्केट में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन हैं जनाब। और इसके अलावा यहाँ पर जो है टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ कीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Varam, Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.
3: Aap sunenge GAFM Network par KTN News.

चौथीं बार ईरान ते लगातार 7 कलाक बमबारी। तेहरान जे बहरी नाकाबंदी पे बरकरार। ईरानी शहर बम्प में अमरीकी हमले में 7 ईरानी फौजी शहीद। ईरानी सेहत वारे वजारत मूजिब अमरीकी हमले में वक्त ताईं 30 शहरी शहीद थिया आहिनि। चनकाम पारा जारी कयल बयान में चयो वियो आहे हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी फौज जो अमरीका ते जवाबी वार। कुवैत, बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकेरनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फौज उर्दन में अमरीकी अॾे ते हमले जी वीडियो बि जारी करे छॾी। पासदारनि इनकलाब चयो त ईरान जो बरामदात रोकियो वियो त खिते जी तवानाई रसद मुतासिर थी सघे थी।

0: ईरान ऐं अमेरिका विच में तकरार शिदत करे वियो। अमेरिकी सदर ट्रंप जे ईरानी बिजली घरनि खे निशानो बणाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बि हमलनि जी बंदिश ताईं आबना हर्मुज खे न खोलण जो ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप चयो आहे त तेहरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमेरिकी सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं।
1: बलोचिस्तान में खारिजनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन शाबान में वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में पाक फ़ौज, पुलिस ऐं एफ़सी जो गॾियल ऑपरेशन शाबान जारी आहे। सिक्योरिटी ज़रनि मूजिबि फोर्सेस जी कार्रवाई में वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 88 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दनि जे धाॻनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि।

0: सियासत जे मैदान में सियासत कयो असांजे ॿारनि जी तोहीन इदारनि ते सियासत करण जो कंहिंखे बि हक़ न आहे। मौलाना ताहिर अशरफ़ीअ जे पैगाम अमन कमेटी जी वफ़द सौदो वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध जूं रिवायतूं ऐं मज़हबी हमांगी पाकिस्तान लाइ मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफ़ी चयो त फोर्सिस जा जवान पघारनि लाइ न पर सरहदनि ते असांजी हिफ़ाज़त लाइ क़ुर्बानीूं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध में सदाई मोहबत ऐं अख़ुआम ॾिनो वेंदो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त अमुन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए इस्तक़ाम माणे सघिजे थो। शर्जील इनाम मेमण चयो त वतन लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि ते फ़ख्रु आहे।
1: पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद खान जो मौलाना फज़ल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान ते माफ़ी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो त दहशतगर्दनि जो को बि मज़हब न आहे हूंदो, क़ौम दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ते मुतफ़िक़ आहे। मौलाना फज़ल रहमान जो शहीदनि बाबति बयान अफ़सोसनाक आहे, मौलाना फज़ल रहमान दुरुस्त न आहे, माफ़ी वठे।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां NDMA चेयरमैन लेफ़्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे चौमासे जे वस कारनि दौरान सूबनि सां राब्ता वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। NDMA चेयरमैन वज़ीर आज़म खे मूनसून बरसातनि दौरान तयारियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। अॻुवाट इतलाउ वारो निज़ाम फाल बणाइण बाबति बे आगाही ॾिनी वई।

0: मुल्की तरक्की ऐं वसीलनि जे बहितर इस्तेमाल लाइ आबादी जो मुनासिब हुजणु ज़रूरी आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त वधंदड़ आबादी ऐं मौसमियाती चैलेंजेस खे वक़्त सिर क़ाबू करणु ज़रूरी आहे। मुल्क जी वधंदड़ आबादी वसीलनि ऐं मैशियत ते ॿार बणिजी रही आहे।
1: वफाकी आईनी अदालत SPSC खिलाफ जांच जो हुकुम मुअत्तल करे छॾियो। इम्तिहान में कामयाब थींदड़ उम्मीदवारनि जा इंटरव्यूज़ रोकण बाबति सिंध हाई कोर्ट जो हुकुम बि मुअत्तल। फेल थियल उम्मीदवारनि जा पेपर्स ॿीहर चेक करण वारो हुकुम बि मुअत्तल। आईनी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी अपील ते धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। जस्टिस बाकर नज़वी रिमार्क्स ॾींदे चयो त सिंध हाई कोर्ट अबूरी हुकुमनामे ई रिलीफ ॾेई छॾियो आहे।
0: कराचीअ में फुर मज़म्मत ते क़तल कयल डॉक्टर आकाश वारे केस में मकभराई टे जवाबदार गिरफ़्तार। गिरफ़्तार जवाबदारनि में उस्ताद बि शामिल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस DIG साउथ चयो त सेफ सिटी कैमराउनि जी मदद सां जवाबदारनि ते पहुता आहियूं। ॾोह लाइ ॿिनि मोटरसाइकल्स हिकु कार खे इस्तेमाल कयो वियो। टिनि जवाबदारनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। टिनी जो वास्तो हिंदू कम्यूनिटी सां आहे। ॾोह लाइ इस्तेमाल थियल हथियार कया आहिनि। फुर वारी रक़म बि मिली आहे।
1: नौशेरो फिरोज़ी शहर मेरापुर वेझो पीर वसण लिंक रोड ते ॾुआरनि जो पुलिस पिकेट ते हमिलो। गोली लॻण सबबि अहलकार परवेज़ राजपर सख़्त ज़ख़्मी। गणती वारी हालति में नवाब शाह मुंतकिल। वाके बाद जवाबदार फरार। पुलिस इलाइक़े में जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी।
0: पेंशन का रियायत या खैरात न, पर मुलाज़मनि जो कानूनी हक़ आहे। सिंध हाई कोर्ट ते TMCA जी रिटायर्ड सेनेटरी वर्कर्स खे पेंशन ऐं राहतूं ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जे आईनी बेंच जो 6 हफ़्तनि में मुलाज़मनि खे राहतूं अदा करण जो हुकुम। अदालत जो पेंशन जी अदायगीअ में देर सरकारी इदारनि जी नाकामी बराबर आहे।
1: हैदराबाद भरिसां हथियारबंदनि नौजवान खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। जतोई ॻोठ में अनवर खे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। लाश इस्पताल मुंतकिल।
0: दोस्तपुर वेझो मुबैना पुलिस मुक़ाबले में ज़ख़्मी थियल ट्रैक्टर ड्राइवर दम ॾेई छॾियो। वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। घोट मोहम्मद हयात ओगाई वासी महरला शेख इस्पताल में ज़ख़्मी अज़ूरनि सां दम ॾिनो। ॻोठाणे जे वारसनि लाश बस स्टॉप ते रखी कश्मीर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। संदनि चवण आहे त पुलिस गुज़िरियल राति पोरियत खे मोटरसाइकिल न बीहारण तां गोलियूं हणी मर्डिंग कयो हो। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
0: मेहरान आयरन स्टोर, हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
0: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
4: अदा, नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
0: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा, जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

मेंटेन करना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाते हैं लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना आपको नहीं आता, तो जनाब यकीन जाने कि आपकी जो खूबसूरती है ना वो थोड़ी सी जो है वो संभल नहीं पाएगी और आपको आगे जाकर उसके थोड़े से नुकसानदायक असरात भी सामने नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी खूबसूरती हमें मिले लेकिन वो खूबसूरती मेंटेन भी होती रहे, तो आपके पास जो हम आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं उनकी क्या ऐसी खास क्वालिटीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बेहतर से भी बेहतरीन वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो पहले मैंने आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो फिलहाल अभी जो है आप लोगों को बारी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हिसाब से बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी क्रीम है जिसे भाई फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसको अगर आप परचेज करेंगे ना, जब आप क्रीम परचेज करने के लिए जाएं तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि क्रीम के डब्बी के ऊपर जो है ना डॉक्टर का फोटो है। डॉक्टर का फोटो इसलिए है ताकि ये चीज आप लोगों के जहनों में क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट कोई ऐसा आम प्रोडक्ट नहीं है, मामूली प्रोडक्ट नहीं है, ये फुल जो है ना इसे मेडिकेटेड तरीके से तैयार किया गया है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। और इसे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है, और सेंसिटिव स्किन रहने की वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट इजीली जो है ना वो सूट नहीं करता उनके चेहरे के ऊपर, वो लगा नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। तो भाई आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो तैयार किया गया है विटामिन ई बीड से। इसके अंदर माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन भी मौजूद है, और साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो इसके अंदर आपको अल्फा आर्बुटीन भी मिलेगा, कोजिक एसिड भी है, ग्लूटाथायोन भी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, आपकी स्किन अगर सांवली हो चुकी है तो उसको गोरा बनाने के लिए, और इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए काफी है। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो 18 साल की उम्र के बाद ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सोचें कि भाई हम बच्चे हैं बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चे नहीं लगाएं, क्योंकि ये नाइट क्रीम है तो नाइट क्रीम है उन लोगों के लिए होती है जो टीनेजर्स हैं, 18 साल के बाद उनकी उम्र जो है वो जैसे उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी में आपके चेहरे में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो उन चेंजिंग को, उन एक्नीज हो या फिर जिस तरह की भी चीजें आपकी स्किन के साथ आ जाती उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए और आपकी स्किन को हमेशा ब्यूटीफुल बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसके अंदर इस तरह के सीरम्स एड किए गए हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, आपकी स्किन को क्लीन रखने के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए काफी है। तो डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश है ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इतनी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप वाकई कोई नॉर्मल सी व्हाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब सी कीमतों में आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप बस जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से परचेज कीजिए, और इसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-595।

ओके जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन सा गाना मैंने लिस्ट में लगाया है जो कि मास्टर मंजूर साहब की आवाज में उन लोगों को डेडिकेट जाता है जो मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइशें करते हैं। अच्छा, अब्दुल कयूम शेख हमारे साथ है। सिर्स मोबाइल चार्ज हो मगर नेट नहीं हो तो ऑप्शन बेहतर है, इससे नेट हो और मोबाइल चार्ज ना हो तो ये बेस्ट है। अब मुझे बात समझ रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं। और अब्दुल कयूम शेख, ओके जी, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ साथ हैं। तो जिन लोगों ने अभी सुना प्रोग्राम स्टार्ट किया उनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं आपके पास जो है ना सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का चांस है आप लोगों को, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपका फोन जो है उसकी बैटरी 100% चार्ज हो और आपके पास इंटरनेट ना हो, या फिर आपके पास इंटरनेट हो और आपका मोबाइल फोन जो है वो सिर्फ 1% चार्ज हो, तो आप क्या चूज करने वाले हैं, क्या सिलेक्ट करेंगे?

हाँ जी, कुछ लोग हमारी जिंदगी में वाकई ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी में गुजारा तो क्या, हम सोच भी नहीं सकते कि उनके बिना हम रह भी पाएंगे। तो ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में भी हैं तो जरा उनका कदर कीजिए और उनको कोशिश करें कि वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहें। और ये जी आबिद परियास्ती हैं और आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको कहते हैं, अच्छा कहते हैं मोबाइल 100% चार्ज सही आप काम वाईफाई पर चला देंगे, वाईफाई भी नहीं ना आलो। अच्छा उनका अलावा जी जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए जी। और मूसा कोरी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई जान। दर्दे दिल कहती है एक बार ओए होए बोलो ना अल्लाह। अच्छा निदली कहती है कि हाँ राइट, मैं भी प्यारी बन गई हूँ डी स्किन फेस वॉश एंड क्रीम यूज करके। राइट ना, यस निदली लगा रही है डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप भी लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए। शुएब मंगी कहते हैं साजिद अली साजिद का सॉन्ग चला दीजिए, आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ। निदरी कहती हम भी चलते हैं तुर्की, तुर्की तो खैर जाएंगे लेकिन पहले पाकिस्तान में जो है इस तरह के सिटीज वहाँ तो घूम लें। अच्छा आयुष मामन गोला भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद। यासीन खंड हमारे साथ हैं, कहते हैं 20% से नीचे नहीं गिरना चाहिए मोबाइल। ओके जी, ओके ओके ओके, टेक्निकल गुरु जी हैं। वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम प्यारी सिद्रा जी, आपकी क्या हाल चाल है जी? मैं बेहतरीन हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। जेकब आबासी आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। शहजाद कादरी हमारे साथ हैं, हेलो। और जी अली मुर्तजा कहते हैं कि हमने हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, हम पे वाजिब है कि दोबारा मोहब्बत की जाए। सलाम टू ऑल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? अरे चाचा मैं नहीं कर सकती ना, अगर मैंने करना होता तो मैं कब की कर चुकी होती। जो चीजें हम नहीं करना चाहते हैं तो वो बस नहीं करना चाहते। अच्छा अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ हैं, थैंक यू जी, बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने का क्या इरादा है? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। अवेलेबल कराएंगे तो भाईजान ये होगा कि आसानी हो जाएगी आपके लिए, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाएंगे और वहां से नाम लेकर पाएंगे क्या जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।

क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। अच्छा जुल्फकार अली जखरानी हमारे साथ हैं, जेकब आवाज से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा रुखसार मरी हमारे साथ हैं मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुन रही हैं, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ओएसटी का फील सुना दीजिए, कल परसों ही तो हमने सुना था। अच्छा बिलाल कहते हैं वो सुकून एससी में भी नहीं जो आपसे बातें करने में है। अल्लाह जय हुदा।

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मोबाइल सेट चार्ज भी हो और नेटवर्क भी मस्त, ये टॉप अगेंस्ट दोनों चीजें नहीं ना सिलेक्ट कर सकते, एक ही करनी है। गुलरेज भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा ये है अमीर बख्श हमारे साथ, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। अच्छा ये बात है, जब हम छोटे थे तो बड़े लोगों की शादियां होती थी, जब हम बड़े हो गए हैं तो छोटे लोगों की शादियां हो रही है, देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आखिर हमारी जनरेशन के साथ हुआ क्या है। जेन जी है ना, तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, तो ये पता नहीं क्या सीन है। तो टेंशन ना लो, सुकून से रहे, खाएं पिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते रहे।

ओगरी चाचा कहते हैं कि एक बात तो बताएं। नहीं जी, नहीं देखा। और कैसे देख सकती हूँ? ओके जी, ओके, मैं कोशिश करती हूँ, फरमाइशें लगाती हूँ सब लोगों की। किशोर भाई, आपने भी फरमाइश कर दी है। और सब लोग जो है पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, और जरा टॉपिक को फॉलो करते रहिए, और जरा मुझे बताते रहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो आप इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। जल्दी से बताइए और साथ से डायल करते जाइए 03-15-799-0595। बड़ी ट्रेस 15-79-595। टाइम थी वाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ओके जी ही मनी ओ ही मोटू था। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

खूबसूरत तरीके से इस गाने को तैयार किया गया है, क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन और मजे आ गए सुनकर। साथ साथ यहाँ पर आप सुन रहे प्रोग्राम जी व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। आप कौन हमारे साथ मौजूद है बताइए जरा, और साथ ही साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

आजकल गर्मियाँ थोड़ी कम हो गई है या फिर ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? या फिर ऐसा है कि हम गर्मियों के आदी हो चुके हैं? ये अब चाहे इतनी गर्मी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई जान।

जी प्रोग्राम वाइट एशियन डेज के ब्यूटी शो में आप हमारे साथ साथ हैं। और जनाब लास्ट लिंक है तो आप लोगों को वेलकम के साथ साथ ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो है ना आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती किस तरह से बढ़ेगी और किस तरह से आप अपनी खूबसूरती को लॉक कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोग इसी बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है वो अगर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते तो हमारी स्किन खराब हो जाती है, हमारी स्किन यानी कि उनको पता नहीं होता कि उनकी स्किन सेंसिटिव है। तो अगर आपकी स्किन भी कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो खराब हो जाती है तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे बनाया गया है। और सबसे बेहतरीन बात कि क्रीम के पैकेजिंग के ऊपर ही आप लोगों को डॉक्टर का फोटो मिलेगा जिससे ये चीज साबित हो जाती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इस तरह का केमिकल नहीं डाला गया जो आपकी स्किन को नुकसान

0: ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी हैप्पी गर्ल, कहती है अस्सलाम वालेकुम सुरजानी। वालेकुम अस्सलाम हैप्पी गर्ल, कहती है सुरजानी ठीक है आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपके नसीब अच्छे करे। थैंक यू जाना, बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला महर मीरपुर खासी में सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन जी। इरम कहती है लव यू सो मच मुझी प्यारी दिलबर दोस्त। क्या
1: गोल गोल शीशा दिख?
0: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह, और आप इस चीज की टेंशन ना लें। और ये हमारे साथ हैं दुनिया जी ना ही परवाह सिस्टर तूने खेर हो जे। हाजी एन हमारे साथ हैं, आप कैसी हैं सरदार हाजी एन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। वरियाम अली कहते हैं सिद्रा हम भी आ गए हैं इस प्यारी सी महफिल में, खुश आमदीद।

ఒకటి రసూలా బాసి ఆబిద్ హుసేన్ శంబాని భాయి వాలేకుమ్ అస్సలాం టాపిక్ అది सलीम बहुत शुक्रिया खुश रहे और हैप्पी गर्ल के दिसो जानी शो हमेशा की तरह आपका गुड है और कहती हैं कि दिल से प्यार किया है दिल से निभाएंगे जब तक जिंदा है सिडो जानी तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहेंगे क्या बात है बहुत शुक्रिया जी और अब्बास महर हमारे साथ हैं अब्बास आपको खुश आमदीद कहा जाता है हैप्पी गर्ल कहती हैं इतनी सारे हैप्पी गर्ल आपने मैसेजेस कर दी पूरा पैनल मेरा भर दिया है आपने और कहती हैं सिडो जानी मैं मेरी अम्मी मेरी सिस्टर अलीजे और बुआ सब आपका शो सुन रही है सभी को दिल से वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग रिक्वेस्ट चलें चाचा मुझे आपका कोई गाना तो अभी तक नजर नहीं आया कि आपने कौन सा गाना बोला है लेकिन चलें लगाने की कोशिश करेंगे नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे और ये हमारे साथ हैं जी नाजिश फ्रॉम लाडकाना कहती है अस्सलाम वालेकुम आप ही आप कैसी हैं आप ही व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव सुबह से मैं बहुत अपसेट थी अब आपकी आवाज सुनी है तो स्माइल करने लगी हूँ नाजिश बहुत थैंक यू आपका मेरी जान ऐसे ही खुश रहे वैसे ऐसा है कि मैंने 2-3 कॉमेंट भी लोगों के ऐसे देखे या आप भी कह रही हैं कि सुबह से आप थोड़ा अपसेट थी ऐसा है कि ये कुछ दिनों से थोड़ा जो है ना वो मूड वाकई अपसेट सा फील हो रहा है उदासी उदासी शायद हुई ये सिर्फ आपके साथ नहीं मेरे साथ भी ऐसा सीन है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मूड जो है वो सही नहीं है मतलब जैसे सही वाला सही होता है ना वो वाला नहीं है बस नॉर्मल सा है अब पता चल रहा है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं तकरीबन सब लोगों के साथ ये मसला चल रहा है कोई बात नहीं जी और साथ साथ हैं जी ऐसे शो खालिद आलम खान मोहम्मद खान हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच सर आप हमारे साथ हैं मुन्नवर मुगल के दी सॉन्ग रुलते गया पर चस बड़ी आई है आदि फेसबुक पर लाइव की लिंक बता दीजिए फेसबुक पर ऐसा करें आप फेसबुक पर जब सर्च बॉक्स होता है ना जो उसमें आप सर्च करेंगे जीए लाडकाना FM 88.8 ठीक है तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाता है पेज को आपने फॉलो कर लेना है और फॉलो के बाद आप जो है ना जब जब हमारा शो आएगा तब तब आपको हमारे जो शो है ना उसकी पोस्ट और नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहेगी तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए पेज ही जी लाडकाना FM 88.8 ठीक है

ओके जी, मुनव्वर भाई आपका बहुत शुक्रिया। इरम कहती हैं यार ना, बिल्कुल यही बात है। और ये हमारे साथ मुलायम इस्लामद सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शामियानी सखर के आंसर, दोनों सूरतों में मोबाइल बेकार है, आपके शो का इंतजार होता है ओ सुनने के लिए FM 88 रेडियो मैम। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ऐसे ही बस आप जो है वो मोहब्बतें करते रहें तो हम आप लोगों के लिए आते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास जी गाने रहते हैं कुछ, तो हम साथ साथ गाने भी सुनते रहेंगे। ये गाना है जिसकी फरमाइश हमें मोहम्मद समान भाई जाने कर दी थी, तो

अच्छा नाजिश, आपका मैसेज इतना ही मुझे मिला था, मुझे लगा था कि ये मैसेज मिसिंग पार्ट है, पर मेरे को लगा क्या पता शायद इतना ही हो। कहती है कि मैसेज हाफ आपने रीड किया है और टॉपिक पर कहती है कि बैटरी चार्ज होनी चाहिए, गुजारे के लिए मैं सीरीज देख लूंगी जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है। मुझे पता है पैकेट से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पैकेज होना चाहिए या डेटा चलना चाहिए, नेट हो मेरे पास, बस ये सीन है कि मेरे पास मटेरियल हो डाउनलोड किया हुआ, बस मैं जिंदगी गुजार लूंगी उसे। ये सही बात है, वैसे मैं भी ऐसा करती हूँ। ओके जी नाजिश, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं नहीं बताइएगा जरा, और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो उसके लिए आप नंबर के ऊपर रब्ता करते रहिएगा, मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और उसके बाद जो है आप आराम से ले सके डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। अच्छा मूसा कोरी भाई, आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।

ओके जी, सो गाना सुन रहे हैं और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। अच्छा, उदास लड़की कहती है कि हम लाड़काना में रहकर भी पूरा लाड़काना नहीं घूमे और चले हैं भाई तुर्की घूमने, देख लें भाई। अच्छा, अली मुर्तजा कहते हैं कि ये सीन कई बार हुआ है मेरे साथ में, मोबाइल चार्ज करने के मामले में थोड़ा लेजी हूँ, पैकेज ऑलवेज बट चार्जिंग ऑलवेज डाउन, जब भी ऐसा होता है तो मैं सो जाता हूँ, नींद अच्छी आती है। वैसे ये चीज मैंने नोटिस करी है कि मर्द हजरात जो होते हैं ना वो थोड़ा इस मामले में पीछे होते हैं मोबाइल चार्ज करने में, ये चीज मैंने वाकई देखी है। और लड़कियां बड़ी आगे होती हैं, उनको बस हर वक्त अपना फोन फुल चार्ज चाहिए, मैं तो ऐसी हूँ और मुझे लगता है सारी लड़कियां ऐसी होंगी, उनको फुल मोबाइल चार्ज चाहिए और लड़की बड़ी बिल्कुल उबिता। वो 1% के ऊपर भी घंटे जो है ना वो मोबाइल चला सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोबाइल चार्ज है या नहीं है। ओके, इसी के साथ साथ बिल्कुल ये उलट वाला सीन है। और साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए। अंसारी हमारे साथ ही, अंसारी वालेकुम अस्सलाम प्यारी बहन, और कहते हैं गुड आफ्टरनून, आई एम काशिफ फ्रॉम कराची, काशिफ आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हेंसी हमारे साथ, रुखसार मरी आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिलाल कहते हैं ये जो हम इतने प्यारे होते जा रहे हैं ये सारा इसका, अरे डी स्किन का कसूर नहीं बोले, कमाल बोले। ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। अखलाक भाई कहते हैं कि सदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से उम्र भी बढ़ती है क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़ती है, लगा कर देखिएगा आप। अगर ये सालार खान हमारे साथ है, सालार भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, हाले सुल्तान हमारे साथ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। गुलशन सोमरो।

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां एंजॉय कयो पिया प्रोग्राम में। बाक़ी असां वटि थोरो वञी टाइम बचियो आहे तव्हांजो असांजो साथ। और बिलाल अली कहती एक दिन फलको सबर मिल जाएगा और मैं मीठा हो जाऊंगा। सही है भाई। अच्छा हारे सुल्तान कहते हैं हम लोग भी आपका शो सुन रहे हैं विद फैमिली, थैंक यू सो मच। आपकी सारी फैमिली को खुशामदीद कहा जाता है। आमिर अली हमारे साथ हैं, थैंक यू। अली अकबर बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं। अरे भाई चांदी सलाह कयो, चांदी सलाह कयो। अच्छा ए मंसारी कहते हैं हम गर्मियों के इतने आदि हो गए हैं कि जब मैं नारायण कागान में गया था वहाँ का मौसम देखकर मैंने एक शो वाले से कहा था कि जिंदगी तुम लोगों की है, हम तो हाँ भाई हम वाकई ऐसा ही है, जिंदगी उन लोगों की है, मैं भी ये सोचती हूँ। खैर हम जो है ना अल्लाह पाक ने सारे इंसानों को इस तरह पैदा किया है कि वो हर एक मौसम में जो ना वो सरवाइव कर सकते हैं, तो हम कितनी गर्मियां हो हम जो है ना वो सरवाइव कर सकते हैं, तो शुक्र अदा किया करें। और उसके अलावा जो है और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाया करें। और किशोर भाई कहते हैं अदा गानो अज मुंह महेश भाई के डेडिकेट कयो आ जंहिंजे घर असां वेठा आहियूं, इज़त रख जो बिल्कुल ही तहाणी पड़ियो पर महेश भाई जे लाइ असां ही गानो हलाए छॾियो आहे। महेश भाउ अदा जी ख़िदमत कजो, चांहि बांहि पीआरियो गाने में चए थो चांद जी सलाह करे, सो बिल्कुल हुआ चांद जी सलाह कजोसि ऐं ॿियो छा ॿियो कुझु बि न। ओके सो टाइम सफ़ा ख़तम थी विया, एसन छा थो चई बस एसन अॼु माण्हुनि जूं फरमाइशूं लॻायूं आहिनि मूं। अच्छा आशिक खास के लिए भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। और सुहेल मुगल हमारे साथ है, मुनवर मुगल, अच्छा मुनवर भाई आप हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ अमान मियो भी हमारे साथ हैं जी, थैंक यू सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से वरी इंशाल्लाह 5 बजे वाले प्रोग्राम में। ओके जी सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाहें, जिनके फीडबैक रह चुके हैं, जिनके गाने रह चुके हैं, सभी से माजरत करते हैं। सो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनका इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और साथ साथ खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। मोकलानी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमरीकी फौज चौथे ॾींहुं बि ईरान ते लगातार 7 कलाक बमबारी। तेहरान जे बहरी नाकाबंदी बरकरार। ईरानी शहर बामपुर में अमरीकी हमले में 7 ईरानी फौज ऐं 30 शहरी शहीद थिया आहिनि। सेंटकॉम पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी फौज बि अमरीका जे जवाबी वार कुवैत, बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी ईरान खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फौज उर्दन में अमरीकी अॾनि ते हमले जी वीडियो बि जारी कई वई आहे। पासरान इनकलाब चयो त ईरान जूं बारामदात ते हमले जी वीडियो बि जारी कई वई आहे। पासरान इनकलाब चयो त ईरान जूं बारामदात खिते जी तवनाई रसद मुतासिर थी सघे थी।
1: ईरान ऐं अमेरिका विच में तकरार शिदत इख़्तियार करे वियो। अमेरिकी सदर ट्रम्प जे ईरानी बिजली घरनि खे निशानो बणाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बि हमलनि जी बंदिश ताईं आपना हमज खे न खोलण जो ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रम्प चयो आहे त तेहरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़दशान अमेरिकी सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं।
0: बलोचिस्तान में ख़ारिजनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन शाहबाद में वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में पाक फ़ौज, पुलिस ऐं एफ़ सी जो गॾियल ऑपरेशन शाहबाद जारी आहे। सिक्योरिटी ज़रनि मूजिबि फोर्सिस जी कार्रवाइयुनि में वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाहबाद में भारतीय दहशतगर्दनि जो अंग 88 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे थाकनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि।
1: सियासत जे मैदान में सियासत कयो, असांजे ॿारनि जी तोहीन न कयो। इदारनि ते सियासत करण जो कंहिंखे बि हक़ नाहे। मौलाना ताहिर अशरफ़ीअ जे पैगाम। अमन कमेटीअ जे वफ़द सूदो वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध जूं रिवायती ऐं मज़हबी हम आहंगी पाकिस्तान लाइ मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफ़ी चयो त फोर्सिस जा जवान पघारनि लाइ न पर सरहदनि ते असांजी हिफ़ाज़त लाइ क़ुर्बानीूं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध में सदाई मोहबत ऐं अख़वत जो पैगाम ॾिनो वेंदो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त अमन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए ई इस्तक़ाम आणे सघिजे थो। शर्जील इनाम मेमण चयो त वतन लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि ते फ़ख्र आहे।
0: पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद खान जो प्रणब फज़ल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान ते माफ़ी करण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो त दहशतगर्दनि जो को बि मज़ुर न हूंदो। क़ौमी दहशतगर्दनि जे कातमे ते मुतफ़िक़ आहे। मौलाना फज़ल रहमान जो शहीदनि बाबति बयान अफ़सोसनाक आहे। मौलाना फज़ल रहमान दुरुस्त न आहे, माफ़ी वठे।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां NDMA चेयरमैन लेफ़्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे चौमासे जे वसकारनि दौरान सूबनि सां राब्ता वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। NDMA चेयरमैन वज़ीर आज़म खे मूनसून बरसातनि दौरान तयारियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। अॻुवाट इतलाउ वारो निज़ाम फाल बणाइण बाबति बि आगाही ॾिनी वई।
0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जी मुज़फ़राबाद में पार्टी जी टिकट होल्डर्स ऐं अॻवाननि सां गॾिजाणी। आज़ाद कश्मीर थींदड़ चूंडनि ते ॻाल्हि ॿोल। पार्टी उहिदेदारनि ऐं अवाम सां राब्तनि में रहण जी हिदायत।

0: वधंदड़ आबादी मुल्क लाइ वॾो चैलेंज आहे। मुल्की तरक़ी ऐं वसीलनि जे बहितर इस्तेमाल लाइ आबादीअ जो मुनासिब चैलेंज आहे। मुल्की तरक़ी ऐं वसीलनि जे बहितर इस्तेमाल लाइ आबादीअ जो मुनासिब हुजणु ज़रूरी आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त वधंदड़ आबादी ऐं मौसमियाती चैलेंजेस खे वक़्त सिर क़ाबू करणु ज़रूरी आहे। मुल्क जे वधंदड़ आबादी वसीलनि ऐं मौशियत ते बार बणजी रही आहे।
1: वफ़ाक़ी आईनी अदालत एसपीएस ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम मुअत्तल करे छॾियो। इम्तिहान में कामयाब थींदड़ उमेदवारनि जा इंटरव्यूज़ रोकणु बाबति सिंध हाई कोर्ट जो बि हुकुम मुअत्तल। फेल थियल उमेदवारनि जा पेपर्स ॿीहर चेक करण वारो बि हुकुम मुअत्तल। आईनी अदालत सिंध पीपल्स सर्विस कमीशन जी अपील ते थोरनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। जस्टिस बाकर नज़फी रिमार्क्स ॾींदे चयो सिंध हाई कोर्ट अबूरी में हुकुमनामे में रिलीफ
0: कराची में फुर मज़ाहमत ते क़त्ल कयल डॉक्टर आकाश वारे केस में अहम अगभराई। टे जवाबदार गिरफ़्तार। गिरफ़्तार जवाबदारनि में हिकु उस्ताद बि शामिल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे डीआईजी साउथ चयो आहे त सेफ सिटी कैमराउनि मदद सां जवाबदारनि ताईं पहुता आहियूं। ॾोह लाइ ॿिनि मोटरसाइकिल ऐं हिकु कार खे इस्तेमाल कयो वियो। टिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। टिनी जो वास्तो हिंदू कम्युनिटी सां आहे। ॾोह लाइ इस्तेमाल थियल हथियार हथ कया आहिनि। फुर कयल रक़म बि मिली आहे।
1: नौसिफ़ोज शहर मेरापुर वेझो पीर वसण लिंग रोड ते ॾोहारनि जो पुलिस पिकेट ते हमिलो। गोरी लॻण सबबि अहलकार परवेज़ राजपुर सख़्त ज़ख़्मी। गणतीअ वारी हालत में गोरी लॻण सबबि अहलकार परवेज़ राजपुर सख़्त ज़ख़्मी। गणतीअ वारी हालत में नवाबशाह मुंतकिल वाक़िए बाद जवाबदार फरार। पुलिस इलाइक़े में जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी।
0: हैदराबाद भरिसां हथियारबंदनि नौजवान खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। जतोई ॻोठ में अनवर खे गोलियूं हणी क़त्ल कयो वियो। कंबर भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग। शौकत बुलेदी क़त्ल। हिकु ॼणो ज़ख़्मी। पुलिस मूजिब वाकियो बुलेदी धुरियुनि में तकरार तां पेश आयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
1: जीएसटी आईपी टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में एतिजाजी मुज़ाहरा। खैरपुर कंदकोट दादू लाड़काणो नसरफ़ोज़ में उमेदवारनि जा मुज़ाहरा। नौजवाननि पारां हुकूमत खां बैरट ते नौकरी ॾियण जो मुतालबो। उमेदवारनि जो त बेरोज़गारी सबबि परेशान आहियूं। रोज़गार ॾिनो वञे।
0: सिंध में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। नंदो ऐं मीरपुर बटोरो में धरणा। नंदू जे कारो अली बहरवा में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि भुख हड़ताल कई। मीरपुर बटोरो में आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ जोग शरीफ़ रोड ते धरणो हयो। खानपुर में मुख़्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो फेज़ू स्टाफ ते मुज़ाहिरो। पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

0: नेदर वेजो बलिया फुल मजामत जख्मी थे टिन भैर में एक भाव फोत वारसन के लड़काने एस एस पी चौक के लाश की धरणों केस में नामजद जवाबदार गिरफ्तार करने का मुतालबो वारसन मौजन पुलिस ना मालूम जवाबदार खिलाफ केस दाखिल कर जवाबदार के बचाने चाहे थी जख्मी नौजवान जवाबदार के सुझातो है मदन केस दाखिल कर इंसाफ किया वे गोट चांडियो पिताबी वट जख्मी थे नसीम फुट इमदाद पिताबी लड़काने के अस्पताल में दम धनी हवाले कर।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0306।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
0: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: It's 3:15 PM.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: क्यों मायूस हो जाते हो लोगों की बातों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बिखरे वजूद को समेटने वाला तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है? क्यों अंधेरे से घबराने लगते हो? क्या तुम नहीं जानते इस अंधेरे के बाद सवेरा लाने वाला तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है? तुमने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? क्या तुम नहीं जानते बेबसी के बाद मदद करने वाला तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है? जरा सी आजमाइश से क्यों इस कदर कमजोर पड़ गई? क्या तुम नहीं जानते आजमाइश में डालकर फिर से उसे निकालने वाला तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है? क्यों नसीब का लिखा समझकर हार मान ली तुमने? क्या तुम नहीं जानते दुआ से नसीब के लिखे हुए को भी बदलने वाला तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है? क्यों अधूरे ख्वाबों को नामुमकिन समझ बैठे तुम? क्या तुम नहीं जानते ख्वाबों को पूरा करने की कुदरत रखने वाला अल्लाह तुम्हारे साथ है? अब मुझे समझ नहीं आता कि जब आपके पास रबी कायनात है तो आप लोग इतने डाउन क्यों हो जाते हैं? अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। जरा सा आपकी लाइफ में थोड़ा सा हचकोला लिया, फौरन से आप लोग जीरो पे चले जाते हैं। जबकि पर्सनली मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। वो जो रब है वही सब है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और आपके तमाम तर मसाइल का हल जो निकलना है वो जाए नमाज से निकलना है। फिर यहाँ वहाँ इधर उधर इंसानों के पीछे क्यों भागते हैं आप लोग? कोशिश यही करिए कि रब से अगर आप जुड़े, अगर आप रब के सामने झुकेंगे, रब आपको दुनिया वालों के सामने कभी नहीं झुकने देगा। यही आज का पैगाम आप सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम। FM88 के लाइव स्टूडियो से आपके साथ आरजी गुलनाज, और शाम 5 बजे तक ये साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही जारी और सारी रहने वाला। इस दौरान होनी है आपसे ढेरों ढेर गपशप, कुछ अपने दिल की कहेंगे, कुछ आपके भी सुनेंगे जनाब। खुशियां, इज्जत और सुकून जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में तीनों नेमतों में से किसी एक की भी कमी आने ना दे। सदा सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, आप पर ढेरों सलामती हो, हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी, मुसीबत, लोगों के शर, हसद और नागहानी आफात से बचाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता करें और अपनी आमान में आपको महफूज और मामून रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

और यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ एक सोशल मीडिया पोस्ट। वफाकी आईनी अदालत में बेवा खातून शमीम बीबी केस की समाअत के मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी और देहाती के दरमियान दिलचस्प मकालमा हुआ। अदालती अमले की जानिब से जैसे ही शमीम बीबी केस की पुकार हुई तो शमीम बीबी का नाम सुनते ही कमरा अदालत में मौजूद एक देहाती रोस्टरूम पर आ गया और आईनी अदालत के जज से ने जो है देहाती से इस्तफार किया कि आप रोस्टरूम पर क्यों आए हैं जिस पर

एक मशहूर कहावत है कि रोजाना एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है। इस कहावत से सेब की अहमियत और अफादियत जाहिर होती है। सेब की तमाम खसूसियात के हुसूल के लिए उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फल हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सरगर्म करता है, जिससे हाजमे का निजाम बेहतर होता है। इसमें मौजूद कुलवी मादे की वजह से ये आंतों के अमल को मजबूत बनाने में बहुत मावन है। चूंकि उसमें एक सेहत बख्श जुज्व टेनिन ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये आंतों के अमराज में फायदा देता है। और सेब के वाफर रेशे की बदौलत छाती, बड़ी आंत, कोलोन और कई इकसाम के जो कैंसर्स हैं उनसे ये जो एप्पल है, जिसे कहते हैं कि एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है, ये हमें तहफ़ फराहम करता है। और ये सब मैं इन्फो इसलिए आप लोगों को देती हूँ कि बहुत से लोग सिलेक्टेड फूड खाते हैं और वो लोग जो है मतलब चुनिंदा चुनिंदा चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि ये तमाम तर नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाजिम है और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए हमारे लिए इसकी ज़रूरत है। तो सेब अहम गजाई अज्जा में घुलने वाले रेशे, क्रोमियम और ग्लोसेटोल शामिल हैं सेब में। इनमें पोनीफेनॉल्स और ग्लूटाथियन जैसे मुफीद अज्जा, मुफीद जो है अज्जा वो भी हैं। अलावा अजी हयातीन अलीफ और जीम यानी विटामिन ए और सी, कैल्शियम फोलाद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की ज़्यादा मिकदार की वजह से सेब जो है तवानाई का बेहतरीन जरिया है। और देखें मैं इसको जो है एप्पल के फवाइद अब आपको बताने वाली हूँ, ये आपने गौर से सुनना है। दिमागी काम करने वालों के लिए सेब एक मौसर गजाई टॉनिक है, क्योंकि इससे कुव्वत हाफजा बढ़ती है। ये तलबा और दिमागी काम करने वालों के लिए एक लाजवाब तोहफा है। सेब दिमागी मर्ज अल्जाइमर यानी नसियान से भी तहफ़ फराहम करता है। सरतान खसूसन फेफड़ों के सरतान से महफूज रखता है। और इसे ज़्यादा मिकदार में खाने वाले मर्द और ख़वातीन सेब बिल्कुल ना खाने वालों के मुकाबले में फेफड़ों के सरतान से 50% महफूज रह पाते हैं। सेब में मौजूद एक मुफीद जूस की हाल ही में शनाख्त हुई है, जिसने फेफड़ों के सरतान से तहफ़ फराहम। सरतान की मालूमात रखने वाले मालिज और अफराद ये बात तो जानते ही होंगे कि माने तकसीद अज्जा जिस्म को अमराज पैदा करने वाले मुजर सेहत आजाद असीलों यानी फ्री रेडिकल से महफूज रखते हैं। और हफ्ते में 5 सेब खाने वाले सांस की बीमारियों और दम में से महफूज रहते हैं। अब देखें ये कितनी जो है प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन होती है, जो जो लोग इन बीमारियों से लड़ रहे हैं और इनसे गुजर रहे हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा। एक पका हुआ सेब कूट लें और इसका रस निकाल लें, कटे हुए सेब का रस निकाल कर उसमें कूटे हुए सेब का रस निकाल कर उसमें मिश्री मिलाएं और सुबह नाश्ते से पहले मरीज को पिलाएं, इंशाल्लाह खांसी ख़त्म हो जाएगी। और एक तहकीक के मुताबिक सेब आला रेशे पर मुश्तमिल फल है। ये रेशा कोलेस्ट्रोल को कम करता है, दिल की शरियानों की बीमारी से तहफ़ फराहम करता है। सेब में फेनोलिक मुरक्कब पाया जाता है जो बुरे कोलेस्ट्रोल को बढ़ने से रोकता है। सेब गुर्दे और पित्ते की पथरी के अखराज में माविन है। ब्राज़ील में की गई एक मुताले के मुताबिक खाने से कबल सेब खाना ख़वातीन में वजन कम करने का बायस बनता है। एक सेब में 50 से 80 कैलोरीज पाए जाते हैं। सेब के एक गिलास और रस को गाजर के आधे गिलास रस के साथ मिलाकर पीने से बड़ी आंत का वर्म दूर हो जाता है। कब्ज खत्म करने के लिए सेब को रात को और एक सुबह निहार मुंह खाना चाहिए। असहाल की तकलीफ में एक पके हुए सेब को कद्दूकश करें कमरे के दर्जा हरारत में, उस वक्त तक छोड़ दें जब तक ये पूरी तरह गहरे रंग का ना हो जाए। उसके बाद उसे खाएं, असहाल से निजात मिल जाएगी। और खाने के बाद सब्ज सेब के 2 या 3 टुकड़े बच्चों को खाने के लिए दें, उनके मुंह में छाले पड़ने का अंदेशा कम होगा। एक सेब छीलें, उसके बीज निकाल दें, उसे गोल टुकड़ों में काटें, उन्हें आधे लीटर पानी में 20 मिनट तक पकाएं, फिर इस पानी को छान लें। इसमें एक चम्मच शहद और सेब का थोड़ा सा सना हुआ गूदा मिला लें और रोज़ाना 2 प्याले पिएं, मसाने के वर्म से निजात मिल जाएगी। एक बड़े सेब को छील कर पतले टुकड़ों में काटें, 10 ग्राम पुदीने के पत्ते, आधा कप लीमू का रस
और चुटकी भर दालचीनी इसमें मिलाएं। इसमें 2 चम्मच शहद और 1/2 लीटर उबला हुआ पानी डालें। छान कर इस महलूल को रोजाना खाने के बाद पिएं। इसमें पेक्टिन की भरपूर मिकदार होती है। ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में माविन साबित होता है। सुबह नाश्ते से पहले एक सेब खाने से आपके दांतों और मसूड़ों को ताकत मिलती है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तकरीबन 28 ग्राम जो कि आटे में चुटकी भर नमक और सेब का रस मिलाएं। दिन में एक बार इसे अपने दांतों पर ब्रश जरूर करें। सामिन बाजारी गजाओं मशरूबात की शक्ल में हम रोजाना जहर खा रहे हैं। हमारे जिगर इसका जिम्मेदार है कि जिस्म से मुजिर असरात का इखराज करे। सेब आपके जिगर के लिए तमाम जहरीले मादों से इसे पाक रखने में एक बेहतरीन माउन के तौर पर काम करता है। सेब के सिरके की कुछ मकदार पीना खून में शक्कर की सतह मुतवाजन रखने में मददगार साबित होता है। ज़ियाबतीस किस्म दोम के मरीजों पर की गई तहकीक के मुताबिक 2 चाय के चम्मच सेब का सिरका सोने से कबल 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने से सुबह ग्लूकोज की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई है। और दुनिया भर में सेब की सैकड़ों इकसाम पाई जाती हैं। चीन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेब पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सालाना पैदावार जो है वो अनलिमिटेड है। सिकंदर आजम के काजिकिस्तान में के सफ़र में 328 कबल मसीह में सेब का जिक्र मिलता है। और बाज़ लोग सेब खाने में तबखीर मैदा महसूस करते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च या नमक के साथ सेब खाने से ये शिकायत जाती रहती है। बुलंद फिशारे खून के मरीज़ पिसे हुए सफ़ेद जीरे के साथ सेब खाएँ या मालिश से मशवरा कर लें। सेब के भी ज़्यादा मकदार में आम अफराद के लिए बिलअमूम नुकसानदेह होते हैं। ये जो है ये मतली के और सर में चक्कर लाने का बायस बन सकते हैं। ज़्यादा नुकसानदेह तब हो सकते हैं जब इन्हें चबाया जाए और कम मकदार में निकलने वाले बीज नुकसानदेह नहीं होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप सेब का कोई जूस वगैरह बना रहे हैं रस बना रहे हैं तो इन बीजों को जो है सेब से पहले निकाल लें, उसके बाद ये आप करें। अच्छी किस्म के बाद सेब की इकसाम पर उन्हें चमकदार और तरोताज़ा रखने के लिए वैक्स पॉलिश की जाती है जो मुजरे सेहत है। इसलिए इसे सेब का छिलका उतार कर खाना चाहिए। और ये इतनी सारी जो इन्फो मैंने दी है ना, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आपने अपनी डाइट में इस फल को जो है ज़रूर शामिल करना है। और जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर हमारे दवाओं पर बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है हम पहले ही अपनी हेल्थ की केयर करें और एक सेब रोज़ाना जो है आपको आपके मालिश से जो है वो दूर रखेगा। यानी डॉक्टर की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी आपको, आप हेल्दी रहेंगे। और जनाब प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की जानी मूव करूँगी। सेगमेंट रिवर्स गियर में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाने वाली हूँ और इसकी फरमाइश हमसे की थी अदा अजीज़ सोलंगी ने। आइए मिलकर इंजॉय करते हैं नाहिद अख्तर की आवाज़ में ये सदाबहार गीत।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-8051
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: की लहर।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सुबह हो या शाम बस
1: 88 नेट

गई होगी मोहब्बत, हो गई होगी. आई डोंट थिंक सो. मुसलसल गुफ्तगू की आदत सी हो गई, तसलसल में यूं लगा के मोहब्बत सी हो गई. अच्छा, सईद वासी की भी पोएट्री है, हमारे दीद आए तर को मोहब्बत हो गई तुमसे, हमारे दीद आए तर को मोहब्बत हो गई तुमसे, किसी गहरे समंदर को मोहब्बत हो गई तुमसे, भले वो चांदनी शब हो या फसले गुल की रंगीनी, मेरे हर एक मंजर को मोहब्बत हो गई तुमसे. खुदा जाने कि अब इस शुगल का अंजाम क्या होगा. दिले नाशाद व मुस्तर को मोहब्बत हो गई तुमसे, किसी लम्हे अगर तुमको मोहब्बत हो गई मुझसे, समझ लेना मुकद्दर को मोहब्बत हो गई तुमसे, जो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ज़ात से ही प्यार करता था, सुनो एक ऐसे पत्थर को मोहब्बत हो गई तुमसे, नहीं जाती तुम्हारे कुर की खुशबू नहीं जाती, मेरे उजड़े हुए घर को मोहब्बत हो गई तुमसे, मेरी आंखों की जानिब जान कर तुम, मेरी आंखों की जानिब देख कर तुम जान सकती हो कि गहरे समंदर को मोहब्बत हो गई तुमसे, किसी सूरत भी अब ये इश्क थम सकते नहीं वासिक, मेरी आंखों के सागर को मोहब्बत हो गई तुमसे, हमारे दीदा तर को मोहब्बत हो गई तुमसे, किसी गहरे समंदर को मोहब्बत हो गई तुमसे. मोहब्बत हो गई जिसको, उसे अब देखना क्या है, भला क्या है बुरा क्या है, सजा क्या है जजा क्या है, जरा तुम सामने आओ नजर हमसे तो टकराओ, किसे फिर होश हो तुमने कहा क्या है सुना क्या है, मोहब्बत जुर्म ऐसा है कि मुजरिम है खड़ा बेसुध क्या ये है, गुनाह क्या सजा खता क्या है, ना अना इश्क के बाजार में अंधी तिजारत है, दिया क्या है लिया क्या है, बिका क्या है बचा क्या है, जमाना झूम उठा है सदाए दाद आती है, न जाने आज माँ हमने गजल में कह दिया क्या है, मोहब्बत हो गई जिसको उसे अब देखना क्या है, भला क्या है बुरा क्या है सजा क्या है जजा क्या है. और जनाब कोशिश की है कि आपके तमाम के तमाम पैगाम तो जो है हम वो शामिल प्रोग्राम कर लें, और मैसेजेस तो मैं आपके तमाम जो

और जनाब प्रोग्राम में आपसे इजाजत भी लेनी है हमने। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाल ही बड़े खुददार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शहकार हुआ करते हैं। सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, वो हुआ करते हैं। शर्म आती है किसे दुश्मन समझे मोहसिन, शर्म आती है दुश्मन किसे समझे मोहसिन, दुश्मनी के भी तो मायार हुआ करते हैं। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साहिब भी राह की दीवार हुआ करते हैं।

बिलाल भुट्टो जरदारी पाक फौज के रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसले जे हल लाइ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जोड़ण जी बि तजवीज़ पेश। आज़ाद कश्मीर जे शहर मुज़फ़राबाद में पार्टी वारनि खे ख़िताब कंदे बिलाल भुट्टो जरदारी चयो त पाक फौज असांजी रेड लाइन आहे, का बि ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं। आलमी साज़िशुनि खे समुझणो जी दुरुस्त चूंड करणी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दीअ वारी सियासत जी हिमायत न कंदासीं। मौजूदा हालतुनि जो मुक़ाबिलो ताक़त सां नथो करे सघिजे, ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बहरान हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जे करे थियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत मसइलो हल करे कश्मीर जो मसइलो कश्मीर में ई हल करणो पवंदो। मोदी

0: सिंध में पानी को।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: क्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आहीं?
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69।

आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घर ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमरीक सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जी हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां नथा डिॼूं। मारिजी विया बलोचिस्तान में पाक फ़ौज, पुलिस ऐं एफ सी जो गॾियल ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फोर्सिस जी कार्रवाईअ में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 88 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ताक़तुनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि। सियासत जे मैदान में सियासत कयो, असांजे ॿारनि जी तोहीन न कयो। इदारनि ते सियासत करण जो कंहिंखे बि हक़ न आहे। मौलाना ताहिर शफ़ी जी पैगाम अमन कमेटी जे वफ़द सूदो वॾे वज़ीर मुअद्द अली शाह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध जूं रिवायतूं ऐं मज़हबी अमांगी पाकिस्तान लाइ मिसाल करार। मौलाना ताहिर शफ़ी चयो त फोर्सिस जा जवान पघारनि लाइ न पर सरहदनि ते असांजी हिफ़ाज़त लाइ क़ुर्बानीूं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध में सदाई मोहबत ऐं अख़ुवत जो पैगाम ॾिनो वेंदो आहे। वॾे वज़ीर मुअद्द अली शाह चयो त अमन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए इस्तेहकाम आणे सघिजे थो। शजील नामेमण चयो त वतन लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि ते फ़ख्र आहे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान जो मौलाना फज़ल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान ते माफ़ी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद ख़ान चयो त दहशतगर्दनि जो को बि मज़हब नाहे हूंदो, क़ौम दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ते मुतफ़िक़ आहे। मौलाना फज़ल रहमान जो शहीदनि बाबति बयान अफ़सोसनाक आहे। मौलाना फज़ल रहमान दुस्त नाहे, माफ़ी वठे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

इरानी बिजली घरनि खे निशानो पाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बि हमलनि जी बंदिश ताईं अपना हरमुस खे न खोलण जो ऐलान। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त तेहरान गालियुनि जी मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान अमरीकी सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जी हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां नथा डिजूं। पाकिस्तान में खारिजनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन शोबान में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज पुलिस ऐं एफ सी जो गॾियल ऑपरेशन शोबान जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फोर्सिस जी कार्रवाईनि में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शोबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग 88 थी वियो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी जब फेशियल के छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोज क्लिनिक ले गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और आने वाली टेक्नोलॉजी की फूस और मौसर इस खफ की निगरानी में की जाए। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर
4: 0300-5569।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27-234-01-453।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372 आई 0242-46-01-00।

0: 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो अलीमुल कुरान रोजानो 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबती जिला, आसिम हुसैन आराई 03073592120।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना औरों के लिए आज ही राबता स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 0320180003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। इसमें करें फेड और दे कुदरती स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कान बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी।
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे मुझे एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फिलहाल वो सरदारी पाक फौज के रेड लाइन करार दे छो कश्मीर मसले से हल लाए ट्रुथ एंड डी कंसिलेशन कमीशन जोड़ने की भी तजवीज पेश। आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी अगवाण के खिताब कदे फिलहाल भुट्टो सरदारी चो पाक फौज असि रेड लाइन है उन खिलाफ का भी गाल बर्दाश्त न कर। जिम्मेवारी जो मुजाहरों करो पव मौजूदा बहरान एक वफाकी वजीर के करे थो है वफाकी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ही हल करो पव मोदी सिंध तास मायदे ते हमलो करे रो है असा सब जवाब देने लाय तैयार आयो सिंधु के पानी से को भी ठाव न कदासी।

0: हाई अलर्ट, ईरान जो बेहमलन की बंदिश ताई अपने हरमुस के न खोलण जो ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप चाहे तो तेहरान गालियन की मेज से वापस न आयो तो इंदड़ हफ्ते ईरान में बिजली घर पुलन के निशानो बनाए वो। ईरानी सदर मसूद पेशान अमरीकी सदर के बयान के रद्द करते है तो ईरान की एक एक इंच जो दिफा कदी धमकियों का नथा डिजों। बलोचिस्तान में खारजन खिलाफ जारी ऑपरेशन शोपान में टे दहशतगर्द मारजी वह। बलोचिस्तान में पाक फौज पुलिस एफसी जो गडियल ऑपरेशन शोपान जारी। सिक्योरिटी जरिए मौजूद फोर्सेस की कार्रवाई में टे दहशतगर्द मारजी वह। ऑपरेशन शोपान में मारजी वह दहशतगर्दन जो अंक 88 थी वो। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द के थाकन के कामयाबी से निशानो बनाया। 5 जुलाई का बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मार चुका है। सियासत के मैदान में सियासत कयो असांजे बारन जी तोहीन न कयो इदारन ते सियासत करण जो कें के भी हक ना है। मौलाना ताहिर अशरफी के पैगाम अमन कमेटी के वफद सूदो वडे वजीर नवाज अली शाह सा गड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध जो रिवायतू मजहबी हमांगी पाकिस्तान लाए मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफी चयो तो फोर्सिस जा जवान पघारुन लाए न पर सरहदन ते असांजी हिफाजत लाए कुर्बानियों दई रहा है। सिंध में सदाई मोहब्बत अखुअत जो पैगाम दिनो वेंदो है। वडे वजीर नवाज अली शाह चयो तो अमन बर्दाश्त है कानून की बालादस्ती जरिए इस्तेकाम आने सकजे तो। शजीलना मेमन चयो तो वतन लाए कुर्बानियों दिंदड़न ते फखर है। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान जो मौलाना फजल रहमान का शहीदन बाबत बयान से माफी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो तो दहशतगर्दन जो को भी मजहब ना हों कौम दहशतगर्दन के खात्मे से मुतफिक है। मौलाना फजल रहमान जो शहीदन बाबत बयान अफसोसनाक है। मौलाना फजल रहमान दुरुस्त ना है माफी वठे। लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की लाए अपनी कदम अंटर है। जदीद टेक्नोलॉजी अख्तियार करनी पवी हाँ गालियन जो वक्त ना है। अमली कदम वधान घुर्जन वफाक सूबन के गड़ी डिघो सफर तय करो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लाइव स्टॉक के हवाले से कौमी सेमिनार के खिताब। वज़ीर आज़म चयो तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के अणगणियन कुदरती वसीलन से नवाजो है। हारी डी रात मेहनत कर मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी न होजन सबब पाकिस्तान लाइव स्टॉक के शोबे में खिते के बेन मुल्क का जरात लाइव स्टॉक के शोबे में मेहनत से कम कयो वने तो एक साल अंदर मईशत बेहतर कर सकजे थी। बलोचिस्तान में अगवा थे अगोणो एक्साइज डायरेक्टर सईद मेमण बाजियाब। सईद मेमण 59 डी का बाजियाब थी कराची वाले घर पहुंचो। वफाकी आईनी अदालत से पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ जांच जो हुक्म मुअत्तल कर छो। इम्तिहान में कामयाब थन्दड़ उम्मीदवार जहां इंटरव्यूज रोकने बाबत सिंध हाईकोर्ट जो हुक्म भी मुअत्तल। फेल थे उम्मीदवार जहां पेपर्स बीहर चेक करो हुक्म भी मुअत्तल। आईनी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील से धुरियन के नोटिस जारी कर छाया। जस्टिस बाकर नजफी रिमार्क्स दीदे तो सिंध हाईकोर्ट अबूरी हुक्मनामे में ही रिलीफ दई छो है।
1: ऐलान ॾियारिया थो त हुनखे घर छॾण जी ज़रूरत आहे, शहर छॾण जी ज़रूरत आहे, सिंध छॾण जी ज़रूरत आहे। हुनजे घर जी रखवाली, चौकीदारी, कागर ऐं चार दीवारी जे तपतुस जे लाइ चयो आहे की जेकॾहिं चौकीदारी करणी पई त चयो आहे रिया कुमारी जे घर जी चौकीदारी कंदी।
0: मौलाना फजल रहमान की हिदायत से जेयूआई वफद की सख्त पहुंची प्रिया कुमारी के वालिद हर्ष कुमार से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के भाव जया रहमान, अब्दुल कईम हालिजवी, राशिद महमूद सुमरो ए बेन राजकुमार से मुलाकात कर हमदर्दी को इजहार किया। प्रिया कुमारी के वालिद मौलाना फजल रहमान की अपील है तो वह बिलावल भुट्टो जरदारी का पुछी बुधाए तो न्याणी जिंदा है या न। असा के संचरण लाए परेशान किया पे वे घर में कोटाई कई पी वे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।